0: आज के शेष कार्यक्रम और आइए सुनते हैं समाचार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टानसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनोबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defence Minister Rajnath Singh today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. The upgraded Slipway 4 along with the new crane will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 DWT. This will increase its capacity to undertake the construction of larger vessels. Fleet Support Ship 1 is the first of 5 fleet support ships being built for the Indian Navy. The 43,500-ton ship entered the waters of the Bay of Bengal 18 months after the commencement of steel cutting. The fleet support ships will provide fuel, water and other supplies to Indian Navy warships at sea, helping them remain deployed for longer periods. The keel laying of Fleet Support Ship 5 marks further progress in the construction of the series. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi and Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken

कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर

था 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। तुम मृद मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा, तुम प्राण हो मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म और मैं मनमोहिनी माया, और मैं मनमोहिनी माया।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दोस्तों, रोज़ रात में जब हम आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो दिल में अक्सर एक सवाल आता है कि आखिर ये तारे बने किस चीज़ से हैं, इनका तापमान क्या होगा। आज से करीब 100 साल पहले इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा। जी हाँ, 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के एक छोटे से गांव में जन्मे मेघनाथ साहा दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों की कतार में खड़े होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1920 में एक ऐसा फॉर्मूला दुनिया को दिया जिसे दुनिया साहा आयनीकरण समीकरण के नाम से जानती है। इस समीकरण ने वैज्ञानिकों को ये बताया कि करोड़ों मील दूर चमकते सूरज और तारों का तापमान क्या है और वे किन गैसों से बने हैं। इससे खगोलविदों को तारों के प्रकाश और स्पेक्ट्रम को का अध्ययन करने और उसके वास्तविक तापमान, दबाव और रासायनिक संरचना का सटीक पता लगाने में मदद मिली। मेघनाथ साहा ने कोलकाता में साहा नाविकीय भौतिकी संस्थान, इंडियन फिजिकल सोसाइटी और साइंस एंड कल्चर पत्रिका की शुरुआत भी की। इसके साथ ही राष्ट्रीय योगदान की अगर इनके बात करें तो वे भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर में सुधार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष

ही रहे, विज्ञान के साथ साथ वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति भी समर्पित रहे। वर्ष 1952 के लोकसभा चुनाव में वे निर्दलीय सांसद चुने गए और संसद में देश की औद्योगिक और वैज्ञानिक नीतियों पर खुलकर इन्होंने अपने विचार रखे। तो आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें और उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने हमें तारों को देखने का एक अलग ही नजरिया दिया।

तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता और रफी की आवाज में। दोस्तों, हर सुबह जब हम अपनी उंगलियों से चाय का कप थामते हैं या बिना सोचे ज्यादा कुछ बिना सोचे सीधे कदमों से सड़क पर चल पड़ते हैं तो हमें ये सब कुछ समाने लगता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए सिर्फ एक उंगली को हिलाना या एक कदम आगे बढ़ाना किसी पर्वत को लांघने जैसा होता है, क्योंकि वो पीड़ित होते हैं मानसिक पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से। ये कोई संक्रामक रोग नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक संतुलन, मांसपेशियों के समन्वय और चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये समस्या मस्तिष्क के उस हिस्से में चोट या असामान्य विकास के कारण होती है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इस स्थिति की सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर भले साथ ना दे रहा हो लेकिन भीतर जो मन है, जो सपने हैं, इनकी मासूम मुस्कान वो वैसी की वैसी होती है। ये बच्चे कमजोर नहीं हैं, ये वो योद्धा हैं जो हर पल अपनी ही मांसपेशियों से एक खामोश जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन सही समय पर मिली फिजियोथेरेपी, असिस्टिव डिवाइसेस और सबसे बढ़कर अपनों के साथ से ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन दवा और थेरेपी से भी ज्यादा बड़ी दवा ये है जो कि समाज को देनी है और वो है स्वीकारिता। इन्हें हमारी दया की बैसाखियां नहीं चाहिए बल्कि इन्हें चाहिए हमारा साथ। इन्हें एक ऐसा समाज चाहिए जहां इनके लड़खड़ाते कदमों को देखकर कोई हंसे नहीं बल्कि इनका हाथ थाम ले। तो आज 6 अक्टूबर को विश्व मानसिक पक्षाघात दिवस के रूप में हम मना तो रहे हैं लेकिन हम अपने नजरिए में एक बदलाव करना, मतलब हमें चाहिए कि इन बच्चों को एक बेहतर समाज देने का संकल्प हमें करना है।

अनजाना फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता और मुकेश को। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंप्रेस चैनल पर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर लिखिएगा, और लिखने के लिए हमारा मेल आईडी वही fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार है, जो आपके मन में हो हमें जरूर लिखिए। और अब बात हमारे देश के गौरव की, हजारों वर्षों के संघर्ष और हमारी जीवटता के एक प्रतीक की। ये कहानी है गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में किया है, क्योंकि इस साल मनाया जा रहा है इस मंदिर के 1000 वर्ष पूरा होने पर इसका सहस्राब्दी वर्ष। इसका निर्माण 1025 ईस्वी में राजा भीमदेव ने कराया था, और फिर आज से ठीक 1000 साल पहले यानी 1026 में जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को लूटा, तब उन्होंने मोढेरा के इस अद्भुत सूर्य मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था। फिर राजा भीमदेव प्रथम ने न सिर्फ दुश्मनों को खदेड़ा, बल्कि बहुत कम समय में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हमारे पूर्वजों के हार न मानने वाले इसी जज्बे के कारण आज ये मंदिर उसी भव्य रूप में खड़ा है। यानी ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी जीवटता और कभी न टूटने वाले हौसले का भी प्रतीक है। इसकी विजयोर वास्तुकला की अगर बात करें तो सावन भादों में सूर्य की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती हैं। इसके ठीक सामने एक विशाल सीढ़ीनुमा कुंड है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इसमें पानी तक उतरने के लिए अलंकृत सीढ़ियां और लगभग 108 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसके खंभों पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है, जिन पर 12 महीने के अनुसार सूर्य के 12 रूपों और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये ऐतिहासिक

सूर्य मंदिर आज मुढेरा गांव के सौर्य परियोजना का वैचारिक प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ तकनीकी रूप से भी इसका एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिससे ये गांव आज देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है। यानी जहां कभी पत्थरों पर सूर्य की पहली किरण देश को चमकाती थी, आज उन्हीं की रश्मियों से पूरा गांव रोशन हो रहा है। इतिहास की विरासत और आधुनिक विज्ञान का ऐसा सस्टेनेबल तालमेल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो आज इस मंदिर के बारे में जानने के बाद हमें जब भी अवसर मिले इस ऊर्जावान विरासत को देखने जरूर जाना चाहिए और अपने जीवंत इतिहास और इसके प्रतीक को, ताकि हम स्वयं अनुभव कर सकें।

टी कंपनियों के साथ शेयर किया जाता है और इसके लिए पहले उम्मीदवारों की सहमति ली जाती है, फिर उम्मीदवारों को की शैक्षणिक योग्यता, संपर्क विवरण समेत उनका बायोडाटा निजी कंपनियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप में प्रतिभा है तो रास्ते और भी हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा अवश्य खुलेगा। बस जो भी कीजिए दिल से कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी।

अभी आपने ये गीत सुना रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म थी गहरा दाग। और त्योहारों का मौसम आते ही हमारे घरों में रौनक आ जाती है, साफ सफाई, नए कपड़े और पकवान, शॉपिंग की लिस्ट। इन त्योहारों में अपने अपने अपने घर के लिए हम कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं और ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को हकीकत में बदलने का अवसर भी है। देश की मिट्टी में रचे बसे प्रकृति के अनुकूल और अपनापन लिए हुए स्वदेशी सामान हमारा मन मोह लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति और परंपरा के मूर्त रूप होते हैं। इसमें हमारा प्राचीन कौशल छुपा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है और अपने समुदाय, अपने देश, अपने क्षेत्र विशेष की कहानी कहता है। स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, पर्यावरण सुरक्षा और अपनी पहचान। जब हम स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक वस्तु घर नहीं लाते, बल्कि देश की किसी दूसरी माँ या बहन की रसोई की खुशियों में शामिल होते हैं और उनका चूल्हा जलाने में ये सहायक होते हैं। यानी स्वदेशी सामानों की बिक्री जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, स्थानीय बुनकरों, कामगारों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपने काम को

करने में और भी उत्साह और खुशी आती है। इसी से हमारे देश की विरासत, संस्कृति और परंपरा को फलने फूलने का अवसर भी मिलता है। तो इस बार अपने लिए, अपने घर के लिए जो भी खरीदें, स्वदेशी ही खरीदें। यानी इस बार जब हम करवा चौथ की चूड़ियां या दिवाली के दिए खरीदने निकलें, तो मॉल की महंगी चमचमाती लाइटों के बजाय हमारी गली के नुक्कड़ पर बैठे उस कुम्हार के मिट्टी के दिए खरीदें जो साल भर इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। और इसी तरह घर सजाने के लिए वंदनवार या तोरण लें तो किसी स्वदेशी प्लास्टिक के सामान को ना लें। और हमारी जो बहन है या कोई स्वयं सहायता समूह द्वारा जो हाथ से सुंदर सुंदर चीजें बनाती हैं, उन्हें इस अवसर पर जरूर खरीदें और अपनी परंपरा और इस स्वदेशी सामान को चुनें। तो इस बार घर का कोना कोना स्वदेशी की खुशबू से महकेगा, ऐसा

ये गीत सुना सुहाना सफर फिल्म से आशा भोसले और रफी की आवाज में। और हमारे कुछ मेल हमारे पास आ चुके हैं आप लोगों के, आप लोग प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और जो ये पहला मेल मेरे सामने है ये है चरण दास जी का। ये कह रहे हैं रेणु जी नमस्कार, और एफएम गोल्ड के प्रस्तुत कर जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोजाना सुनते हैं, और भाई सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी फनकार स्वस्थ रहें। तो ये आपने लिखा है, बिल्कुल सभी लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहिए। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मेल है ये है उमेश कुमार का, और ये लिखते हैं कि घर आंगन प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ जो जानकारी दी जा रही है वो भी बहुत अच्छी है, और जो है ये प्रोग्राम ये नियमित ये भी श्रोता हैं और लिख रहे हैं कि इन्हें अच्छा लग रहा है। इसके अलावा गौरी शंकर लिख रहे हैं, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, ये भी लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह सुनते रहिए और लिखते रहिए हमें। इसी तरह से एक और मेल है हमारे पास सुदर्शन मुखी का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, और इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से ये लिख रहे हैं। इन्हें भी कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत भी अच्छे लग रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और उमेश कुमार का ये दूसरा एक और मेल है, ये भी लिख रहे हैं कि अप्रैल फूल का गाना जो आपने सुनवाया था अभी कि, तो ये इन्हें बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने ध्यान से प्रोग्राम सुनते हैं, जानकारियां और गीत आपको पसंद आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और हमें लिखते रहिए, क्योंकि यकीन मानिए आपके लिखने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, हम प्रोग्राम को और अच्छा और बेहतर बना पाते हैं। तो अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर की साफ सफाई की, जो कि आजकल कई घरों में शुरू हो गई होगी या होने वाली होगी। तो साफ सफाई जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इस बार करें स्मार्ट और सेफ सफाई। सबसे पहला और जरूरी टिप ये है कि अकेले पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी ना उठाएं, खासकर से ये बात हम महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं जो कि समझती हैं कि सारा काम बस उन्हीं की जिम्मेदारी है और वो शुरू हो जाती हैं। घर के सभी सदस्यों को, बच्चों से लेकर बड़ों तक, छोटे छोटे काम बांट दीजिए ताकि साफ सफाई का बोझ नहीं लगे, बल्कि एक मजेदार पारिवारिक गतिविधि की तरह आप उसे आनंद उसका उठा सकें। दूसरा पॉइंट है कि कमरे दर कमरे चलिए, एक साथ पूरा घर फैलाने से तनाव बढ़ता है, इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से कीजिए, आज किचन तो कल लिविंग रूम। और हां, कबाड़ या पुराना सामान जो एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे या तो दान कर दीजिए या फिर बाहर का रास्ता दिखाइए। घर जितना हल्का होगा मन उतना ही साफ होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि इस चक्कर में कोई जरूरी सामान ना फेंक जाए। तीसरा और सबसे अहम पहलू है कि आपकी सेहत, हार्श केमिकल या तेज एसिड को अवॉइड करें, फिर इसे इस्तेमाल करते वक्त हाथों में दस्ताने पहन लें, और धूल मिट्टी से बचने के लिए मुंह पर मास्क और सूती कपड़ा बांधना भी बिल्कुल ना भूलें। साफ सफाई के दौरान बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि थकान ना हो। और चौथा और सबसे जरूरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और झालरों की जांच भी जरूर करवा लें, और पर्दे और जालों को हटाते समय तारों का खास ख्याल रखें। तो इस बार दिवाली पर सिर्फ घर के कोने कोने को ही नहीं, बल्कि अपने काम से अपने काम के तरीकों को स्मार्ट बनाइए, और ज्यादा थकिए नहीं बल्कि मुस्कुराइए।

0: धूल का फूल। अभी इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को है, तो मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म है दिल तेरा दीवाना और आवाज है रफी और लता की। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: बिजली गिरा के आप खुद

0: Brendan.
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की इसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी

0: ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम के नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859 जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defense capabilities. The Defense Minister today launched Fleet Support Trip 1, laid the keel for Fleet Support Trip 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said Fleet Support Trip 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects. The Defence Minister said the Indian Navy has repeatedly demonstrated its capabilities in the Indian Ocean region as a first responder and preferred security partner. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madhurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Tattan Chavadi in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. Vice President C.V. Radhakrishnan has said Sanskrit is the golden string which connects all Indian languages. Addressing the second convocation of Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan said every Indian language is great and they have contributed towards the culture of the nation. He said Prime Minister Narendra Modi has taken several initiatives for the promotion of the Sanskrit language along with other languages. The Vice President said the National Education Policy 2020 has further strengthened this vision by placing special emphasis on the Indian knowledge system. Union Minister of State for Jal Shakti, Dr. Raj Bhushan Chaudhary, today said India has undertaken one of the largest water conservation efforts in its history, reflecting the strength of Jan Bhagidari and cooperative federalism. Addressing the Water Innovation Summit in New

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो संजीव कुमार हैं हरी श्रीवास्तव की कलाकार के रूप में, अमिताभ बच्चन हैं गोविंद श्रीवास्तव, विनोद मेहरा है राजेश श्रीवास्तव, तनुजा है सीमा श्रीवास्तव, परवीन बॉबी है मैरी, बिंदिया गोस्वामी मंजू वर्मा, प्रेम चोपड़ा बंसी के रूप में, महमूद जग्गन के रूप में और एके हंगल रहीम चाचा, रमेश देव, रामनाथन, पिंचू कपूर श्री वर्मा जी के किरदार में। और अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस फिल्म में गोविंद यानी अमिताभ बच्चन और राजेश दो भाई हैं। वे अपने बड़े सौतेले भाई हरि यानी संजीव कुमार के साथ काफी खुश रहते हैं। हरि अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने दो महीने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। उसकी नई नई शादी हुई होती है और उनकी पत्नी सीमा को अपने पति के अपने सौतेले भाइयों की इतनी चिंता करने से बहुत थोड़ी जलन होने लग गई थी। वो अपने पति के जाने के बाद उन दोनों को घर छोड़कर मुंबई जाने के लिए मजबूर कर देती है।

कुछ दिनों तक सड़कों में भटकने के बाद उन दो भाइयों को रहने की जगह मिल जाती है। वे दोनों रहीम के घर रुकते हैं, जिसका एक बेटा अनवर और एक बेटी फरीदा है। गोविंद अपने भाई की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर ले लेता है और टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। वहीं राजेश में लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो एक अमीर खानदान की लड़की मंजू से शादी कर लेता है और उसके ही घर पर रहने लगता है।

वर्मा का भाई बंसी। राजेश को ड्रग तस्करी के काम से वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी के गाड़ी से भेज देता है। उसके साथ अनवर भी इसी काम में लगे रहते हैं। एक दिन पुलिस को इसकी भनक लग जाती है और मुठभेड़ में अनवर को बुरी तरह से चोट लग जाती है।

श्रोताओं, जब अनवर को बुरी तरह चोट लग जाती है तो बंसी के गुंडे अनवर का प्रहार करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान रहीम को गोली लग जाती है। इस घटना के बाद राजेश को एहसास होता है कि किस तरह

बंसी उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बंसी तब तक सेठ वर्मा की हत्या कर चुका होता है और उस हत्या के आरोप में राजेश को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को उस जगह पर गोविंद मिलता है और उसी पर हत्या का आरोप लग जाता है। उसे अदालत में लाया जाता है जहां हरी जज रहता है। जब हरी के सामने गोविंद की सच्चाई आती है तो वह जज न बनकर उसकी तरफ से वकील बन जाता है। वो सारी सच्चाई सामने ले आता है कि बंसी ही असल हत्यारा है। बंसी अदालत से भागने लगता है, गोविंद उसे अपनी टैक्सी के सहारे पकड़ लेता है। वे तीनों भाई वापस से एक हो जाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी कुछ इस तरह से इस फिल्म की कहानी, और आगे भी हम इस फिल्म के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये अगला गीत जो कि बहुत ही लोकप्रिय, वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत काफी फेमस हैं, बट उन फेमस गीतों में से एक है ये अगला गीत।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी जो आज की कार्यक्रम है वो आज की जो फिल्म है वो है 1982 की फिल्म खुद्दार। और अगर इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से के बारे में बात करें तो ये फिल्म अमिताभ बच्चन की उस समय रिलीज हुई थी जब बेंगलुरु में कूड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी और पूरा देश उनकी सलामती

अली की दुआ कर रहा था। निर्माता अनवर अली असमंजस में थे कि फिल्म रिलीज करे या नहीं। तब हरिवंश राय बच्चन ने सलाह दी थी कि शो मस्ट गो ऑन, और अमिताभ भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। तो वैसे तो उनकी सलाह बहुत ही अच्छी थी, शो मस्ट गो ऑन, हमारा शो भी चलता रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

श्रोताओ, अगला जो हमारा दिलचस्प किस्सा है वो ये है कि निर्माता अनवर अली, जो कि हम सब जानते हैं, या जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अनवर अली महमूद के छोटे भाई हैं और अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत सात हिंदुस्तानी से एक साथ की थी। अनवर अली जब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तब अमिताभ ने इस फिल्म के लिए अपनी कोई एडवांस फीस नहीं ली और इस फिल्म की, और ये भी है कि इस फिल्म के जो लेखक थे वो कादर खान थे। ये उनकी इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी, पटकथा और संवाद यानी डायलॉग्स तीनों उन्होंने अकेले ही लिखे थे।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उन संदेशों को हम अपने इस कार्यक्रम में सुनते हैं। जो हमारा पहला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन या हमें लिखकर भेज रहे हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह में लेकर भेजे हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से अगला जो संदेश है वो सदानंद मंदूरकर का है और इनके साथ हैं सुशीला देवी का, कुमार गौरव मंदूरकर, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं डाबकी रोड अकोला से। और जो अगला संदेश है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर जालंधर से, दिग्दर्शन गौर और कविता गौर हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं। और जो अगला संदेश है वो है मसरूर हसन का और इनके साथ है शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। अगला जो संदेश है वो है हीरामणि वर्मा का, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा से। कमलकांत गुप्ता हमें लिखकर भेज रहे हैं पिपरिया से, श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता, आर कुमार, बंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हरजिंदर शिंदा हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से, धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं। और जो साथ ही अगला संदेश है वो है फारूक अली खान का, भूषण खेरा में लिखकर भेज रहे हैं, पूनम गजनेजा जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गजनेजा और निमित दिशानी। जो अगला संदेश है वो है अनिल मोहन का, इनके साथ ही उषा मोहन, तिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से। श्रोता, अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, गांव फरांसी, जिला हिसार से, संजय ढींगिया में संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है नमन ढींगिया, पार ढींगिया। अगला संदेश है राधे श्याम देवांगन का, इनके साथ है जगदीश देवांगन, चंपा देवांगन, छत्तीसगढ़ भवरपुर से, अजीत भावसार हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार, सनी भावसार, राकेश कुमार भावसार गुजरात से, उषा मोहन और इनके साथ हैं अनिल मोहन, पीटीआई संसद मार्ग से, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमें लिखकर भेज रहे हैं, शांति नगर सोनीपत से। और जो अगला संदेश है मेहर अरोड़ा का है और इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से, और पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से, और इनके साथ है मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सुपान टाइडे, आशीष और अन्य सदस्य के लोग। तो श्रोताओं, चलिए समय की थोड़ी कमी है और इस कमी को देखते हुए हम सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का और इस फिल्म का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और इस कार्यक्रम में मुझे यानी दीक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

बजा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा पहुंचा दूंगा सीधे थाने। अरे हट जा बाजू।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस अब से कुछ देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नूं अपनी समुद्री ताकत नूं होर वधाउण लई इक मजबूत ते एकीकृत इकोसिस्टम दी लोड़ है। देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन देहाती एक्ट 2025 तहत मंजूर शुदा कामां दी सूची नोटिफाई कीती है। विरोधी पार्टियां ने वोटर सूचियां दी विशेष सोध एफआईआर प्रक्रिया विच बेनियमियां अते मुख चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार नूं हटाउण दी मंग करदिआं दिल्ली दे संसद मार्ग तों चोण कमिशन दे दफ्तर तक विरोध मार्च कढ़िआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ते देश विच अराजकता दा माहौल बनाउण दी योजनाबद्ध कोशिश करन दा इल्जाम लाया ते भारत दी महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमेट्स दी कप्तानी छड्डण दा ऐलान कीता है। खबरां विस्थार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नूं अपनी समुद्री ताकत नूं होर वधाउण अते देश दी रक्षा समर्था नूं मजबूत करने लई इक मजबूत अते एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम दी लोड़ है। श्री राजनाथ सिंह ने अज विशाखापट्टनम विच हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विखे फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 दी शुरुआत कीती। उन्होंने फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 दी नींह रखी अते अपग्रेड कीते स्लिपवे 4 अते 300 टन समर्था वाली गोलियत क्रेन दा वी उद्घाटन कीता। इकट्ठ नूं संबोधन करदे श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 का नींह पत्थर एचएसएल विखे उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत दीआं समुद्री समर्थावां नूं मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कदम ने। उन्होंने कहा कि सूरे नामक फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 भारतीय समुद्री फौज की संचालन प्रभावशीलता वधाएगा। उन्होंने कहा कि एचएसएल विखे नवा स्लिपवे ते गोलियत क्रेन वड्डे जहाज निर्माण प्रोजेक्टां नूं पूरा करने शिपयार्ड की समर्था च वाधा करनगे। उन्होंने कहा कि समुद्री फौज ने मानवतावादी सहायता आफत राहत समुद्री डाकू विरोधियां कारजां अते समुद्री सुरक्षा विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 8 दहाकियां तों वध समें तों भारत दीआं समुद्री ते रक्षा जरूरतां नूं पूरा करने विच अहम भूमिका निभाई है।
5: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी

0: बिल्टी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण देहाती विकास मंत्रालय एक्ट 2025 तहत मंजूरशुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। नवे पेंडू कार्ज ढांचे 375 मंजूरशुदा कामों का प्रबंध है। यह नवी सूची पिछले ढांचे तहत 266 कामों तो 44% वाधा दर्शाती है। कामों नूं 4 मुख थम्मां दे आधार ते पुनर्गठित किया गया। इन्हें पानी सुरक्षा, बुनियादी पेंडू ढांचा, आजीविका ढांचा अते मौसमी घटनावां ते आफतां दी तैयारी लई विशेष काम। हरेक काम ग्राम सभा द्वारा प्रवानित एक विकसित ग्राम पंचायत योजना तहत जमीनी

0: Bernal Hargesi. ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਬੈਨਿਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਗੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ 7 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਾ ਟਿਨੀਬੂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 3 ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशविरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफाने सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और मरबूत समंदरी इको निजाम की जरूरत है, ताकि वो अपने समंदर की ताकत में इजाफा कर सके और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना सके। वजीर दिफा ने आज बेड़े के पहले इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी और स्लिप वे 4 नीज 300 टन की एक कोलायथ ट्रेन की भी जदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। ये तकरीब विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मुनक्किद की गई। जनाब सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया जाना, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखा जाना और HSL में बुनियादी ढांचे की तश्दीद के काम का इफ्तिताह भारत की समंदर से मुतालिक सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम इकदामात हैं। उन्होंने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1, जिसका नाम सूर्या है, इससे भारतीय बहरिया की रिसाई, पायदारी और मुअस्सर कामकाज को तकवियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए स्लिप वे और गोलायत ट्रेन से शिपयार्ड्स की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा कि यहां बड़े जहाजों की तामीर के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर आज जिमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मधुरांतकम और तारापुरम, पुदुचेरी में तट्टान सावदी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा आसाम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशविरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफाने सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संगी मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मजमू तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशविरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इस हसूलियाबी से मुल्क के मौजूदा हिफाने सेहत निजाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खासतौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले

0: जुग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वकार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क उनका अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मजबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तआवुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निजाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निजाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां बिलखसूस कांग्रेस मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदाम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मंसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयान दे रही हैं।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बरतरफ करने के मुतालबे के तहत किया गया। अलबत्त जब ये मुजाहिरीन आकाशवाणी के करीब इंतखाबी कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे तो हिफाजती अमले ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना दिया। यमन में आज लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क्यादत में इत्तेहादी फोर्सेज ने हूसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दी। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेज के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने जद्दा में एक कार्रवाई करते हुए असलहा के जखायर, धमाका खेज मवाद से लैस कश्तियों और बहरी बारूदी सुरंगों को जखीरा करने वाली तनसीबात को तबाह कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 टी20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2000

0: 26 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफान सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Marsha Williams with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal. And India to take on West Indies in first T20 match at Lucknow this evening. Defence Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. The Defence Minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1 named Surya will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and the Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
2: वर्ष 2025 में
3: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस अकॉर्डेड इन 2025 रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल पोजीशन। एचएसएल हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड विद द कंट्री मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिकली। द नेवी शिपयार्ड डीआरडीओ अकेडमिया इंडस्ट्री MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.
2: Aur tezi se execute karega.
1: Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defence requirements for more than 8 decades. He said the shipyard's Mini Ratna Category 1 status, accorded in 2025, reflects its transformation and improved financial position. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madurantakam and Tharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagaran Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Nagaon in Assam. Counting of votes will be taken up on Friday. The 8 candidates fielded by the BJP for the upcoming Rajya Sabha elections from Uttar Pradesh filed their nomination papers at the Vidhan Bhavan in Lucknow. यूपी चीफ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है। कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर कि एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी।

0: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टांचावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
1: नर्मदा नदी में साधु बे पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बने देविका बेन तड़वी बताती है,
3: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
2: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है

0: सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: खबरें अब आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। मीडिया में परे आकाशवाणी करगिल है। दोपहर 2:30 हैं। पेश खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: सबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है उमंग कार्यक्रम में
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल दिवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का सबसे मजबूत आधार है। आज की मेहनत कल के उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन।
2: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है,
1: आज का बरसात और मेंढक कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया। पर्यावरण में हर जीव का यानी चींटी से लेकर हाथी तक एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है
2: जी।
1: हमें पशु पक्षियों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए
2: जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और इसके साथ हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार जी का,
2: चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन और प्रभा देवी सेन जी ने लिखा है,
1: मैं आप लोगों का उमंग कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ, बड़ी ही सुंदर और आनंदमयी प्रस्तुति रहती है
2: जी।
1: कार्यक्रम को सुनकर दिल आनंदित हो जाता है, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखण्ड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप और संगीता गोप के साथ साथ लिपि गोप और दीपाली गोप ने भी हमें संदेश भेजा है।
2: पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए के अंतर्गत प्रेरक प्रसंग की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जो बेहद पसंद आ रही है। प्रेरक प्रसंग छोटे जरूर है लेकिन इसमें ज्ञान की जानकारी, शिक्षा का संदेश भरपूर प्राप्त होता है। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी एवं दशरथ मांझी जी के प्रेरक प्रसंग सुनकर सुखद संदेश प्राप्त हुआ। आगे के भी प्रेरक प्रसंगों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रेरक प्रसंग सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हम हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं आइए इस सप्ताह अब हम चलते हैं चर्चा की दुनिया में। हम इस सप्ताह चर्चा करेंगे दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरस्कारों की।
2: अजीत जी क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी व्यक्ति के महान काम को

0: सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है?
1: विमलेश जी, मेरा अनुमान है आप बात कर रही हैं नोबेल पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही अजीत जी, लेकिन आज की कहानी नोबेल पुरस्कार के साथ साथ उस व्यक्ति की भी है जिसके एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो आज भी जारी है, और उस विरासत को हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं।
1: तो चलिए श्रोताओ, आज सुनते हैं नोबेल पुरस्कार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है वर्ष 1833 से, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था अल्फ्रेड नोबेल।
0: बालक अल्फ्रेड नोबेल को बचपन से ही विज्ञान और अध्ययन में विशेष रुचि थी। वे बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। बड़े होकर वे रसायन विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में काम करने लगे।
1: श्रोता, उन दिनों सड़क बनाने और खानों का उत्खनन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था
0: जी।
1: पत्थरों और चट्टानों को तोड़ना बहुत ही श्रम साध्य कार्य था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
0: अल्फ्रेड नोबेल ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों पर भी शोध किया। शोध और प्रयोग करने के क्रम में एक बार उनकी प्रयोगशाला में भयंकर विस्फोट हुआ और उनके भाई एमिल को जान गंवानी पड़ी।
1: उनके इन प्रयोगों का भारी विरोध हुआ, लेकिन श्रोताओं, अल्फ्रेड ने हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने डायनामाइट की खोज की।
0: खनन, सुरंग बनाने और निर्माण कार्यों में डायनामाइट के उपयोग से काम बहुत आसान हो गया। अब आसानी से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन विस्फोटकों का इस्तेमाल युद्ध में भी होने लगा। डायनामाइट के कारण बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को जान गंवानी पड़ती थी। समाज में अल्फ्रेड नोबेल की कटु आलोचना हुई। कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल को सामूहिक स्थानों में भी लोगों की निंदा सुननी पड़ती थी।
1: और इसी क्रम में श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन और इतिहास की धारा बदल दी।
0: क्या हुआ था अजीत जी?
1: विमलेश जी, वर्ष 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक अखबार ने गलती से स्वयं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की खबर प्रकाशित कर दी जबकि वे जीवित थे
0: जी।
1: अखबार में उनके बारे में प्रकाशित खबर उन्होंने स्वयं पढ़ी। मालूम है अखबार में क्या छपा था?
0: जी, क्या छपा था?
1: अखबार में छपा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई।
0: और श्रोताओं, इस घटना ने उन्हें गंभीरता से सोचने का अवसर दिया। वे सोचने लगे, मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे किस रूप में याद करेगी?
1: जी श्रोताओं, डायनामाइट के आविष्कार से उन्होंने अथाह धन कमाया था। अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी विरासत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। और पता है श्रोताओं, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया?
0: 1895 में अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था के लिए रखने के लिए निर्णय लिया जिसके ब्याज की राशि से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
1: आशुतोष, फिर हुआ ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत के अनुसार व्यवस्था की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
0: शुरुआत में भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन पांच क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: और बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ
0: जी।
1: विमलेश जी, मुझे इस पूरी कहानी में एक बात बड़ी प्रेरक लगती है।
0: वो कौन सी अजीत जी?
1: वो ये है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया उसे केवल अपने लिए रखने के बजाय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगाया जिससे मानवता के लिए किए गए महान कार्यों को पहचान मिल सके।
0: जी अजीत जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी हाँ श्रोताओं, नोबेल पुरस्कार की कहानी केवल पुरस्कार पाने वालों की कहानी नहीं है, ये उन विचारों की कहानी भी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो श्रोताओं, अल्फ्रेड नोबेल की कहानी हमें वास्तव में क्या सिखाती है?
0: शायद यही कि जीवन में केवल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने दुनिया को क्या दिया।
1: जी बिल्कुल, और दुनिया को कुछ देने के लिए हमें पुरस्कार ही मिले ये जरूरी नहीं है
0: जी।
1: कोई शिक्षक किसी बच्चे को शिक्षा देकर, कोई डॉक्टर सेवा करके, कोई वैज्ञानिक नई खोज करके और कोई साधारण व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद करके भी समाज में अपना योगदान दे सकता है।
0: यानी महानता केवल बड़े पुरस्कारों में नहीं बल्कि उन कामों में भी होती है जो किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।
1: तो श्रोताओं, आज की कहानी से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, और हमारा सवाल है,
0: हम अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारा अच्छा काम लोगों के काम आता रहे?
1: और यही सोच एक व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है,
0: और यही है नोबेल पुरस्कार की कहानी
1: जी।
0: तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आज की प्रस्तुति आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: हमारा आज का प्रश्न है, अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अब तक किन किन भारतीयों

0: को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है चतुर गीदड़।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।
2: मगरमच्छ अपने आप से।
3: तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। मित्र कछुए।
4: कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो?
3: क्या बताओ मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं।
4: क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली?
3: अरे मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता।
4: हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है।
3: मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वो पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा।
4: अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो।
3: ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
2: एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर कहता है,
4: हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
5: क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो?
4: मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा।
5: है? क्या कहा, मगरमच्छ मर गया? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था।
4: क्या कहा?
5: कुछ नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ?
4: आओ, उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे।

0: देखो बेचारा मरा पड़ा है।
1: गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से कहता है,
2: अरे ये तो बिल्कुल शांत है।
3: नहीं नहीं, अरे ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है?
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, देखते नहीं ये तो मरा पड़ा है।
3: पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है।
2: लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा।
0: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
1: तभी मगर

0: नहीं भाई, ये बिल्कुल मर गया है।
1: तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है।
2: गीदड़ भागकर दूर जाते हुए कहता है,
0: भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम चतुर गीदड़।
4: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया, ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
5: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक।
6: इस कार्यक्रम में महायोगी अष्टावक्र के बारे में जानकारी देते हुए उनके दर्शन की चर्चा की गई है तथा बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा राजदरबार के एक विद्वान को पराजित किया और न्याय की स्थापना की।
7: त्रेता युग में आरुणी उद्दालक नाम के महर्षि थे। वे महापंडित, वेदों के ज्ञाता और तर्क वितर्क में निपुण दार्शनिक थे।
8: उनकी सुजाता नाम की पुत्री थी। ऋषि उद्दालक के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे ऋषि कहोड़। मेधावी और मेहनती कहोड़ वेद शास्त्रों में अपना अधिक समय बिताते थे। गुणवती, रूपवती और विदुषी सुजाता भी वेदों की ज्ञाता थीं। एक दिन,
9: कहोड़, मैं तुम्हारे ज्ञान और सेवा से प्रसन्न हूं। जैसे ही तुम्हारी शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण होती है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी सुजाता से कर दिया जाए।
10: जो आज्ञा आचार्य।
9: तुम दोनों मेरे आश्रम में रह सकते हो, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपने शिष्यों की शिक्षा का कार्य भी जारी रखो।

0: पति कहोड़ और पत्नी सुजाता संगमा नदी के किनारे ऋषि उद्दालक के आश्रम में सादगी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ महीने बाद सुजाता गर्भवती हो गई।
1: भले ही क्यों ना मेरा शिशु अभी गर्भ में है, मैं उसे पवित्र मंत्रों से अवगत करवाऊंगी।
2: समय बीता, सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। उसके शरीर में 8 स्थानों पर विकृतियां थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। शरीर में विकृतियों के बावजूद बच्चा बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। सुजाता अपने नवजात शिशु को लेकर अपने पिता उद्दालक के आश्रम में आ गई। लगभग इसी दरमियान ऋषि उद्दालक की पत्नी को भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम श्वेत केतु रखा गया। अष्टावक्र ऋषि उद्दालक को अपना पिता ही मानने और कहने लगे, और मामा श्वेत केतु को अपना भाई कहते थे। एक समान आयु के श्वेत केतु और अष्टावक्र मामा भांजे मानो भाई भाई की शिक्षा साथ साथ हुई।

0: ऐसे में दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक।
1: 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए।
2: ए, ये तुम्हारे पिता की गोदी नहीं है, जाओ अपने पिता की गोदी में बैठो।
0: बालक अष्टावक्र ने अपमानित महसूस किया और रूठे हुए वो अपनी माँ के पास आए।
3: माँ, क्या मैं तुमसे जन्मा हूँ, है ना?
4: तुम रो क्यों रहे हो मेरे बेटा अष्टा, क्या हुआ?
3: माँ, मुझे बताओ कौन है मेरे पिता? तुम चुप क्यों हो? क्या महर्षि उद्दालक मेरे पिता नहीं है?
4: हाँ अष्टा, महर्षि उद्दालक तेरे पिता समान है, वो तेरे धर्म पिता है बेटा।
3: तब कहोड़ कौन थे? मन कठोर कर सच बोलो माँ।
4: बेटा, वो पिता है तेरे बेटा, पिता है।
1: आखिर नाना और पिता का भेद तो खुलना ही था। गरीबी से परेशान और धन कमाने की आशा में कहोड़ शास्त्रार्थ में स्वयं को वेदों के विद्वान सिद्ध करने के लिए मिथिला में राजा जनक के दरबार गए। जब उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया तो राजा जनक ने उनका स्वागत किया।
5: राजा जनक, मैं ऋषि कहोड़। ओह
6: पूज ऋषि, आप सही समय पर आए हैं। हमारे यहां बंदी नाम का एक विद्वान है, शास्त्रार्थ वाद विवाद में उन्हें कोई नहीं हरा सकता।
5: हे राजन, मुझे कोशिश करने दे।
7: आचार्य कहोड़ और आचार्य बंदी के बीच होने वाला यह शास्त्रार्थ अत्यंत रोचक होगा और घातक भी हो सकता है। देखते हैं क्या होगा।
0: शास्त्रार्थ प्रारंभ तो हुआ परंतु अधिक देर ना चल सका क्योंकि कहोड़ बंदी के सामने टिक ना पाए थे।
1: फिर बेचारे कहोड़ को भी बाकी पराजितों की तरह कठोर दंड दिया गया।
6: अत्यंत दुख है, मैंने एक और ऋषि को खो दिया है जो यज्ञ में भाग लेने आए थे। अब यज्ञ सफल कैसे होगा?
0: जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बता दिया कि ऋषि कहोड़ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे।
5: श्वेत केतु,
6: अष्टावक्र, मुझे
5: प्रतिशोध लेना है और बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। आओ मिथिला राजा जनक की सभा में चलते हैं। सुना है 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए महायज्ञ को राजा जनक पूर्ण नहीं कर पाए।
6: हाँ,
5: उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है।
6: कब चलना है?
5: बस अभी तुरंत।
0: चौदह वर्षीय मामा भांजे श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों मिथिला में राजा जनक के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए।
8: बालक, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हो?
5: हम ऋषि उद्दालक के शिष्य हैं। हम मिथिला नरेश से मिलना चाहते हैं, कृपया आप हमें उनके पास ले चलें।
1: ब्राह्मण बालकों को राजा जनक के पास ले जाया गया।

0: बालक तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है?
1: मेरा नाम श्वेत केतु है। हम ऋषि उद्दालक के आश्रम से आए हैं।
2: और मेरा नाम अष्टावक्र है। हे राजन, हमने आचार्य बंदी की चुनौती के बारे में सुना है तथा शास्त्रार्थ में पराजित हुए लोगों के भाग्य के बारे में भी। मैं बंदी को चुनौती देने और उन्हें पराजित होते देखने आया हूँ।
0: मुझे तुम्हें अवश्य सावधान करना चाहिए। तुम आचार्य बंदी के ज्ञान, उनके शास्त्रार्थ कौशल से परिचित नहीं हो। अब तक कोई भी उन्हें हरा नहीं सका है।
2: ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सामना कभी भी मेरी क्षमता के विद्वान से नहीं हुआ। मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं दंभी बंदी को हारते हुए नहीं देख लेता।
3: जनक को लगा कि आश्वस्त अष्टावक्र जिद पर अड़े हुए हैं।
0: मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगे तो मैं तुम्हें आचार्य बंदी से मिलने की अनुमति दूंगा। तो बताओ, सोते समय कौन आंख नहीं मूंदता है? जन्म लेने के बाद कौन नहीं हिलता? और दिल किसके पास नहीं है? और ये भी बताओ कि कौन सी वस्तु तेज वेग से बहती है?
2: हे राजन, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेने के बाद हिलता नहीं है, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है।
0: अत्यंत सुंदर।
4: राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ और गूढ़ प्रश्न पूछे। सही और सटीक उत्तरों से वे बेहद प्रभावित हुए।
0: ब्राह्मण कुमार, आप बालक नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता। आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है।
2: विद्वानों के संरक्षक और आश्रय दाता मिथिलेश की जय हो।
5: मिथिलेश की जय हो।
3: दरबार में बैठे सभी लोग खिल खिलाकर हंसने लगे।
2: मैंने सोचा था कि शास्त्रार्थ मंडप में विद्वानों और ज्ञानियों के दर्शन होंगे, किंतु क्षमा करें, इस सभा में तो सभी मूर्ख बैठे हैं।
4: अष्टावक्र भी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे।
0: अन्य सभी हंस रहे हैं ये तो मुझे समझ में आया, किंतु बालक कुमार, आप क्यों हंस रहे हैं?
2: आप सब अपने आप को महान समझते हैं और तुम सभी चमड़े के इस जीवित पुतले पर हंस रहे हो। क्या आपने कभी सूक्ष्म के बारे में सोचा है? परखा है मन की आंखों से? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों मूर्खों की सभा में निर्णय हो रहा है।
0: हे ब्राह्मण कुमार, तनिक समझाकर स्पष्ट करें।
2: हे राजन, मंदिर के टेढ़ा मेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निर्वयव है और मंदिर सावयव है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है राजन।
0: यज्ञ मंडप में

0: अनुमति देता हूँ। मंडप में एक वेदी पर आचार्य उद्धव।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अष्टावक्र भाग एक, और इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: मुकुल सिंह,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का समाचार प्रोग्राम उमंग। हम आकाशवाणी करगिल से आप मुखातिब हैं। दोपहर 3 बजे हैं, पेश खिदमत है। अब हम आकाशवाणी से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम्स रिले करेंगे।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, फिल्मी गीतों का खूबसूरत, रंगीन और दिल को छू लेने वाला मौसीकी का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए कुछ लम्हों के लिए दुनिया की मसरूफियात को भूल जाइए, अपनी समातों को सुरों के हवाले करें और हमारे साथ इस खूबसूरत मौसीकी के सफर का आगाज करें। तो फिर देर किस बात की, आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत नगमे से, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से। आवाजें हैं अनुराधा और मनहर की, गीतकार आनंद बख्शी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदार आला इतिहाद और इलाकाई सालिमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अज्म का इयादा किया है। आलमी बैंक ने मौजूदा माली साल के लिए भारत की मजमू घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की का तखमीना 0.5% बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। सऊदी क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से हूसियों के खिलाफ कई कार्रवाइयों के तनाजुर में यमन में लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और मरबूत समंदरी इको निजाम की जरूरत है ताकि वो अपनी समंदर की ताकत में इजाफा कर सके और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना सके। वजीर दिफा ने आज बेड़े के पहले इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी और स्लिपवे 4 नीज 300 टन की एक कोलायत ट्रेन की भी जदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। ये तकरीब विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मुनक्किद की गई। जनाब सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया जाना, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखा जाना और HSL में बुनियादी ढांचे की तजदीद के काम का इफ्तिताह भारत की समंदर से मुतालिक सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम इकदाम है। उन्होंने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 जिसका नाम सूर्या है, इससे भारतीय बहरिया की रिसाई पायदारी और मुअस्सर कामकाज को तकवीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए स्लिपवे और गोलायत ट्रेन से शिपयार्ड की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा और यहां बड़े जहाजों की तामीर के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिरा कद्र तावुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदाम किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निजाम पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निजाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस अदब और फलसफे की दुनिया की शानदार हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि आज भी संस्कृत के नायाब मखतूतात न सिर्फ भारत में पाए जाते हैं बल्कि नेपाल तिब्बत और चीन जैसे मुल्कों में भी मिलते हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम के तहत पानी के तकरीबन 1,58,00,000 सेरे जमीन जखीरे तैयार किए गए हैं। वजारत ने यह भी बताया कि इस पहल के तहत तकरीबन 1,81,000 एकड़ पर मुश्तमिल पानी के इन जखीरों को इस पहल में शामिल किया गया है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि मजबूत हुक्मरानी, समाजी शिरकत, तकनीकी इख्तरा और इज्तिमाई शराकतदारी की वजह से मुल्क में पानी के तहफ्फुज में खातिर खा तरक्की हुई है। पानी के इख्तरा से मुतालिक सरबरा कॉन्फ्रेंस एक 2 रोजा तकरीब है जिसमें आलमी दानिश्वर और पानी के बंदोबस्त से मुतालिक मरबूत हिकमत अमली पर अमल करने वाली शख्सियतें यकजा हुई हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन

नायडू ने आज कहा है कि मगरबी एशिया का बहरान एक बड़ी तश्वीश है क्योंकि इसकी वजह से हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में नमानिगारों से बात करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल के जायजे के लिए हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों के बारे में एयरलाइंस और तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ तबादलाए ख्याल कर रही है। उन्होंने कहा कि वजारत सभी मुतालिका फरीकों के साथ मीटिंग करके कोई फैसला करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदारे आला इत्तेहाद और इलाकाई सालिमियत के तई अपनी हिमायत का इजहार किया है। भारत ने रूस के जेरे एहतमाम मॉस्को में मुनाकिदा अफगानिस्तान से मुतालिक 8वीं मॉस्को फॉर्मेट मुशावरतों के मौके पर अफगानिस्तान की अवाम की फलाह व बहबूद के तई अपने अजम का इरादा किया। इस मौके पर भारतीय वफद की क्यादत रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेक पाकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। बेलारूस और मिस्र ने बतौर मेहमान इस फोरम में शिरकत की। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने की। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि फोरम ने उन मुल्कों को यकजा किया है जो अफगानिस्तान के साथ मुसावी और मुश्तरका तौर पर सूदमंद शराकत दारी के खाहां हैं। आलमी बैंक ने मौजूदा माली साल के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की का तखमीना अप्रैल के 6.6% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। ये पेशरफ्त तवक्को से ज्यादा तरक्की होने के तनाजुर में हुई है। भारतीय मईशत मौजूदा माली साल 2027 की पहली तिमाही में 7.8% रही है। ऐसा मजबूत निजी खपत और सरमायाकारी की वजह से हुआ है। आलमी बैंक ने कहा है कि निजी खपत का तरक्की का मुहर्रिक बने रहने की तवक्को है जबकि मुस्तहकम अवामी सरमायाकारी और मुआविन माली पॉलिसियों से इसमें मजीद मदद मिलेगी। मुल्क की बरामदात में भी तवक्को से ज्यादा इजाफा हुआ है हालांकि आलमी तिजारत और सियासी जुग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल का निजी सरमायाकारी पर मनफी असर पड़ सकता है। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमात ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जान सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संग मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मजमूई तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशवरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इस हुसूलियाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जान सेहत निजाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खासतौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जोग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने की कामयाबी की अक्कासी होती है। यमन में आज लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस ने हूसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दीं। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने हुदैदा में एक कार्रवाई करते हुए असलहे के जखायर, धमाका खेज मवाद से लैस कश्तियों और बहरी बारूदी सुरंगों को जखीरा करने वाले तंजीबात को तबाह कर दिया जबकि बुहेरा अहमर के जनूबी आबी रास्तों पर होने वाले मुमकिन हमलों को भी नाकाम बना दिया। इत्तेहादी फोर्सेस ने मजीद बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म और सादा में एक ऐसे असलहे के जखीरे को भी तबाह किया है जहां पर 20 मिसाइल मौजूद थे। ताहम हौसियों से वाबस्ता मीडिया ने दावा किया है कि उनकी फोर्सेज ने जबाब और पावल मंदब में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेज की पेशकदमी को पसपा कर दिया है। हालिया झड़पें यमन की हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किए जाने के बाद हुई हैं। इस कार्रवाई को सऊदी फजाई मदद भी हासिल है जिसका मकसद हूसियों के जेर कब्जा इलाकों को दोबारा हासिल करना है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। बेनिन सिटी से लागोस जाने वाले नाइजीरिया के फौजी तैयारे के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। 32 महलुकीन में 25 मुसाफिर और अमले के 7 अफराद शामिल हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल

0: किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदारे आला इत्तेहाद और इलाकाई सालिमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के तई अपने अज़्म का इरादा किया है। आलमी बैंक ने मौजूदा माली साल के लिए भारत की मजमू घरेलू पैदावार की शरह तरक्की का तखमीना 0.5% बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। सऊदी क्यादत में इतिहादी फोर्सेज की जानब से हूसियों के खिलाफ कई कार्रवाइयों के तनाजुर में यमन में लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आशा भोसले की आवाज़ में, मौसम फिल्म का नगमा, नगमा निगार गुलजार, मौसीकार मदन मोहन।

लोफर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नागिन फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। साथ में आशा भोसले की आवाज भी शामिल है।

0: सामिनी इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत प्रोग्राम आदाब नुमा।
1: अदब नुमा के एक और शुमारे में आप सभी का खैर मकदम है। मेजबान नईम का आदाब कबूल कीजिए।

0: दोस्तों, किस्से कहानियां सुनने का एक अलग ही लुत्फ है, और अगर माजी के औरत पलटें तो दादी और नानी की कहानियों का क्या कहना। बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी हैं इन किस्सों और कहानियों से। लेकिन अब तो जनाब उस दौर से बहुत आगे आ गए हम और आप। कहानियां अफसाने हम आज भी सुनते हैं, पसंद करते हैं, मगर अब थोड़ी सी संजीदगी आ गई है। अगर उनके मौजूदात की बात की जाए तो हम संजीदगी की जो बात करें उस हवाले से कर रहे हैं। बहरकैफ, अफसाना तो हम आज भी आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आपके लिए एक सरप्राइज है, और आपके लिए लेकर आए हैं एक नायाब तोहफा। तो चलिए ताखीर ना करते हुए फिलहाल आपको सुनवाते हैं नूरैन अली हक का अफसाना हसरतों के चराग। तो आइए सुनते हैं ये अफसाना।
1: वह टॉप फ्लोर से भागता हुआ तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में पहुंचा। एक उचटती सी निगाह डाली, कमरा इंसानों से खाली था। सब तारों भरे आसमान के नीचे थे। उसका हाथ सबसे पहले कद आदम शीशे तक पहुंचा और शीशा जमीन पर गिर पड़ा। उसने तैश में जोरदार मुक्का किताबों की अलमारी पर लगे शीशे पर दे मारा। तेजी के साथ शीशे के गिलास और पानी का जग भी अपने वजूद की किर्चियां बिखेर चुके थे। कंप्यूटर माउस को उसने दीवार पर दे मारा। दोनों हाथों से मॉनिटर को उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके पार्ट पुर्जे अलग हो गए और शीशों की किर्चियों पर पैर पटकता रहा। कमरा मैदान जंग बन चुका था। सामान तजीन की रौनक खो चुके थे। बिस्तर को भी नोच खसोट कर उसने इधर उधर उछाल दिया। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, मेजें पैर से माजूर हो चुकी थीं। जब उसके पैर जख्मी हो गए और टीसें उठनी शुरू हुईं, तो वो जमीन पर बेसुध गिर पड़ा। पैरों से खून दिस रहा था, चेहरा आंसुओं से शराबोर था, दिमाग की हवाइयां उड़ रही थीं, पसीना बह रहा था, उसके जिस्म की रगें ऐंठने लगी थीं, उंगलियां बेजान लग रही थीं। दरअसल उस दिन भी बिजली गायब थी। जून का महीना, शिद्दत की गर्मी, और वो अंधेरे में अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसके अलावा सारे लोग टॉप फ्लोर पर खुशगप्पियों में महव थे। मेट के बताने पर भैया भाभी उसके पास आए और उसे भी ऊपर ले गए। वो जाना नहीं चाहता था, न जाने

क्यों। उन दिनों तारों भरे आसमान से उसे नफरत होने लगी थी। तारों को देखकर उसके पर नफरतों की आंधी चलने लगती थी। वह सर झुकाए सबके सामने बैठा था। आसमान रोशन था, पूरे चांद की रात थी। चांद की सदारत में सितारे अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। चांद झूमता हुआ सितारों को दांत से नवाज रहा था। पूरा माहौल खुशगवार था। भाभी अपने मैके में गुजारी हुई चांदनी रातों की यादें दोहरा रही थी कि वो चित लेट कर घंटों तारों को देखा करती और अपनी नानी से कहानियां सुना करती थी। भैया बता रहे थे कि दादी हम भाइयों बहनों को बचपन में गर्मी की रातों में इसी छत पर चांद तारों की ढेर सारी कहानियां सुनाया करती थी। बच्चे उनकी बातों में महव थे। उनमें से एक आध रो रहे थे और बकिया गौर से बड़ों की बातें सुन रहे थे। वक्फे वक्फे से तमाम लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, मगर उसने आसमान को एक बार भी नहीं देखा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके अंदर कुछ चल रहा था। कभी कभी वो अपनी उदास पलकें उठाकर महफिल में मौजूद लोगों को देख लेता, फिर बेहिसो हरकत हो जाता, गोया वो न किसी को देख रहा है, न सुन रहा है, न महसूस कर रहा है। जब वो डीएवी पब्लिक स्कूल का प्राइमरी दर्जे का तालिब इल्म था तो दादी से खूब कहानियां सुना करता था। पहले तो कहानी सुनने और सुनाने की आदत दादी ने ही डाली थी। अम्मा और अब्बा अक्सर कुछ दूर पर आपस में बातें करते रहते और वो अपने बड़े छोटे भाइयों और बहनों के साथ दादी से चांद सितारों की कहानियां सुना करता। दादी अम्मा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहानियां सुनाया करती। वह अक्सर कहानियां सुनते सुनते सो जाता और जब उठता तो याद करता कि दादी ने कहानी कहाँ खत्म की है और आज रात कहानी कहाँ से सुननी है। कभी कभी तो कहानी सुनते सुनते उसकी आंख लग जाती तो दादी माहिर एडिटर की तरह कहानी के सीन काट देती। वो उठकर बैठ जाता। दादी उसे बड़े प्यार से अपने सीने से लगाती और कहती, अच्छा लेट जाओ, सुनाती हूँ, और कहानी दोबारा शुरू हो जाती। दुनिया बहुत बड़ी है, चंदा मामा बहुत दूर दूर जाते हैं, तुम्हारी तरह उनके ना जाने कितने चाहने वाले हैं। वो किसी से नाइंसाफी नहीं करते, इसीलिए वो हमेशा चलते रहते हैं। वो अपना सर दादी की गोद से उठाकर कहता, ये सितारे नहीं चलते, किसी से बात नहीं करते, नहीं ये नहीं चलते। वो अपनी निगाहें उठाकर सितारों को गौर से देखता। लाल, पीले, हरे, नीले और ना जाने कितने रंगों के सितारे उसे नजर आते। उसकी हसरतों के चिराग रोशन हो जाते। उन्हें देखते हुए वो अफसुर्दगी के साथ सोचता, इन ढेर सारे सितारों में कोई मेरा नहीं है। फिर वो इस बात पर गौर करता कि इन सितारों में किसे अपने लिए मुंतखब करे और किसी एक सितारे को अपने लिए मुंतखब कर लेता तो उसे अपनाने के तरीके सोचने लगता। दूसरी रात भी वो पहली रात वाले सितारे को बड़ी महवियत से तलाश करता, मगर वो सितारा कहीं खो जाता। फिर या तो तमाम सितारे उसे अपने लगने लगते या कोई एक उसे अपना नहीं लगता। कहानी सुनाते सुनाते दादी थक हार कर अपनी कब्र से जा लगी और वो भी कहानी सुनने की उम्र से आगे निकल गया। अलबत्ता एक सितारे की तलाश उसे बाकी थी। छत पर लेटा घंटों वो सितारों को देखता और उनसे बातें करता। एक रात छत पर उसके सिवा कोई नहीं था। वो देर तक लेटा सितारों को एकटक देख रहा था। फिर जाने क्या हुआ, वो खड़ा हुआ और टहलने लगा। देर तक टहलते टहलते फिर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। लैलाए शब अपनी जुल्फें दराज कर रही थी। उसके बदन का शोला भड़क रहा था, ख्वाहिशें सर निकाल रही थीं। इसी आलमे बेकरारी में सितारों की अंजुमन से एक सितारा उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। हौले हौले वो उसके करीब पहुंच रहा था। उसके वजूद में फुलझलियां छूट रही थीं, उसकी बाछें खिल उठी थीं। उसने अपनी आंखें मूंद ली। जूं ही सितारे की कुर्बत उसे महसूस हुई, उसने अपनी आंखें खोल दी और खुशी से झूम उठा। सितारे की कुर्बत, उसकी रंग बिरंगी रोशनी और चमकदार लिबास में वो खो गया। दुनिया जहान की बातें करता रहा। उसे गर्वीदगी का एहसास हो चला था। वो सोना चाहता था कि सुबह उठकर अपने कामों में लगे, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। वो उसे तकता रहा, बगौर निहारता रहा। उससे बातें करते करते वो आसमान की सैर भी करता रहा और खुद पर नाजा भी था कि अरसे से जिसकी ख्वाहिश को वो अपने वजूद में पाल रहा था वो लम्हा आ ही गया है। सुराही नुमा गर्दन, मखरूती उंगलियां, हरन की सी आंखें, किताबी चेहरा, कमान नुमा भवें, वो अब तक नाविलों और अफसानों में पढ़ता रहा था। गो के इस तरह की लफाजियां उसे कभी अच्छी नहीं लगी थीं। इन खसूसियात पर गौर करने की उसके पास फुर्सत भी नहीं थी। उसे खुद में तब्दीली का एहसास हो रहा था। उसके वजूद में ताजा हवा की कोई खिड़की खुल गई थी। सितारे का लिबास बशर में मलबूस होना उसे अच्छा लगा। वो मुतहैर निगाहों

से उसे देखते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उस वक्त न चाहते हुए भी उसकी कुर्बत उसे अच्छी लग रही थी। उसका हाथ खुद बखुद सितारे के हाथों से होता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। सितारा मानीखेज अंदाज में मुस्कुराया। उसे लगा उसका यह अमल मुनासिब नहीं है, लेकिन मजबूर था। उसकी रगें तनी हुई थीं, पूरे जिस्म में सरसराहट थी, उसके कान की लवें सुर्ख हो रही थीं। तुम इंसानी शक्ल में? हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। वो और भी बहुत कुछ उससे दरियाफ्त करना चाहता था, लेकिन इसके सिवा कुछ न पूछ सका। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। तहय्युर के आलम में उसकी निगाहें सितारे के चेहरे पर मरकूज थीं। उसके हाथ सितारा के जिस्म के लम्स को महसूस कर रहे थे। लम्स का एहसास उसके रगो पै में सिरायत कर रहा था। थोड़ी ही देर में सुरूर छाने लगा था। उसकी आंखों के पपोटे भी आपस में मिल रहे थे। सितारे के हुस्न जमाल आंखों की पुतलियों में महफूज हो रहे थे। सितारा की आवाज पर उसने आंखें खोली। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं, आज की रात और नींद, खुमार आलूद लहजे में उसने जवाब दिया और दोनों हाथों के हाले में सितारे को ले लिया और देर तक सितारे को अपने सीने से चिमटाए रखा। सितारा उसके सीने के अंदर जाता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा बस यही उसकी असल जिंदगी है जिसको उसने पा लिया है। उसका दिल बलाइयों उछल रहा था। वो आसमानी घोड़े पर सवार सितारे को अपने पीछे बैठाकर आसमानी सैर पर निकल गया। जमीन पर मौजूद सारी चीजें बिल्कुल छोटी और बेवकत लगने लगीं। जूं जूं वो ऊपर की जानिब बढ़ता रहा, जमीन से उसका रिश्ता कटता चला गया। उसने देर तक सितारे से बातें की। उसकी जिंदगी, उसके खानदान, उसके रिश्तेदारों और उसकी पसंद की चीजों के बारे में मालूम किया और फिर रात के तीसरे पहर जिस्मानी तौर पर थका मांदा और जहनी तौर पर शादां व फरहां वापिस आकर वह अपने बिस्तर पर दराज हो गया। हालांकि पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने आसमानी सफर की यादों में डूबा हुआ सितारा के हुस्नो जमाल की दाद देता रहा, मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता रहा। जैसे रात की खुशियां दिन में भी मुंतकिल हो जाएंगी और वह अपने बहुत से दोस्तों की तरह सितारा को साथ लेकर बाइक पर घूमा करेगा, पार्कों के चक्कर काटेगा, मॉल्स में काफी पिएगा और घंटों उसे देखता रहेगा। अपने दोस्तों को गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर देखकर उसकी हसरतों के चराग रोशन हो जाते। शायद रश्क का जज्बा भी उसके वजूद में आहें भरने लगता। क्या ये मुमकिन है कि उसके वजूद में हसरतों के चराग रोशन न हो? वो इन बातों पर भी गौर करने लगा। अब किसी दोशीजा को देखते हुए उसकी कैफियत अजीबोगरीब क्यों होने लगती है? क्या उससे बचा नहीं जा सकता? और अगर बचा जा सकता है तो उसका तरीका क्या है? वो फिर सोचता, आखिर बचा भी क्यों जाए? अगर इस उम्र में लड़कियों को देखकर उसमें हरारत और तवानाई पैदा ना होगी तो किस उम्र में होगी? वो किसी तरह उस रात का खात्मा नहीं चाहता था। सोच के समंदर में गोताजनी करके अपने दिल की तसल्ली के लिए मोती चुनना चाहता था और रात शहर की तरफ सरकती जा रही थी। तेजी के साथ सुबह नमूदार हो रही थी, पौ फट चुकी थी। मुअज्जिन अजान की सदाएं बुलंद कर रहा था, मर्ग बांग दे रहे थे। वह अपने बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता था। लेटा लेटा न जाने कितनी कहानियां बुन चुका था और उसकी कहानियों का रावी थकने का नाम नहीं ले रहा था। सूरज की शुआएं उसके कमरे की खिड़की के शीशे को चीरती हुई उस तक पहुंची तो वो बिस्तर से उठ गया। अब उसे दिन भर की भाग दौड़ सताने लगी थी। हालांकि इससे पहले वो अपने कामों और जिम्मेदारियों की अदायगी में बड़ा मुतहर्रिक रहता। दिन की रोशनी उसे लहू लुहान करती। कॉलेज जाओ, वहां ऐरे गैरे की शक्लें देखो, हसरतों के चिराग रोशन करो। वही बोरिंग क्लास, तरह तरह के गैर मुतवक्के सवालात, इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ हो जाने की नसीहतें और आखिर में लब्बैक यस्सर हाजिर जनाब जैसे घिसे पिटे फरसूदा जुमले और फिर अब्बा के साथ दुकान में बैठकर गाहकों से तू तू मैं मैं। वो हांफता कांपता कॉलेज पहुंचा। उसके हाथ में चंद किताबें और एक नोटबुक थी। वो सर झुकाए सरशारी में चला जा रहा था। वो खुद को बदला बदला सा महसूस कर रहा था। आंखें नीची थीं, कुछ सोच रहा था। कई बार कई लोगों से टकराने से बचा। कई दोस्त दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आमतौर पर जब वो कॉलेज पहुंचता तो वो भी उनमें शामिल हो जाता और वो सब कुछ करता जो ग्रेजुएशन के तलबा करते हैं। लड़कियों को देखना, किसी जोड़े को देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा देना, अपनी किसी क्लासमेट से छेड़छाड़ करना

फिर हंसते खिलखिलाते हुए अपनी राह लेना। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी करने की उसे ख्वाहिश नहीं थी। वह आंखें नीचे किए चला जा रहा था। कई साथियों ने उसे हैरत से देखा और आवाज भी दी। कई आवाजों को उसने नजरअंदाज कर दिया। चंद दोस्तों ने मुखिल ना होने की सोचकर उसे उसकी हालत पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। क्लासरूम के बाहर रुकैया

कि सांसों की आमदोरफ्त एक दूसरे को महसूस होने लगी। सितारा ने अपने वजूद का एहसास कराया। उसके दिल की कैफियत यकीनन जरा बदली, लेकिन शक अब भी बाकी था। उसके लिए यह मुमकिन भी नहीं था कि वो सितारा को छोड़ दे, मगर बेयकीनी खुद को खाकिस्तर नहीं करना चाहती थी। गुर्बत के एहसास के साथ बेयकीनी जर्रे में तब्दील होती जाती और फिर सांस लेने लगती। सितारा उसे हवाओं के दोष पर ले उड़ा और पीछे पीछे बेयकीनी नक्शे कदम गिनती रही। सितारा उसे उसके दिल की कैफियत बताता रहा, वो हैरतजदा सा सुनता रहा। परवाज की रफ्तार बढ़ती चली गई, जमीन नीचे बहुत नीचे छूट चुकी थी। दूर से ही एक महल नजर आया। उनके परवाज का रुख महल की तरफ था। महल के इर्द गिर्द कबूतरों के उड़ने वाले गोल कहीं जाके छुप गए थे। तेज रोशनी महल के हुस्न में इजाफा कर रही थी। उसे देखने वालों की भीड़ थी, मगर वो बंद था। लोग उसे बाहर से ही देख रहे थे। महल के सदर दरवाजे की तरफ आती हुई सीधी सड़क पर सितारा उसे ले आया। परवाज की रफ्तार कम होने लगी। काले गुंबदों का चेहरा साफ नजर आने लगा। सितारा अब भी कुछ कह रहा था, शायद बेयकीनी खत्म करने की नसीहत कर रहा था, और वो महल की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा, काश ये महल मेरा होता, मैं और सितारा इसी महल में रहते। महल का तर्ज से तामीर मुसलमानों जैसा था, मगर वो मुगलों की तामीरात से कुछ मुनफरिद था। सह मंजिला महल, हर मंजिल के बाद वाली मंजिल पहली मंजिल से जरा छोटी, और चौथी मंजिल पर इंतहाई खूबसूरत सफेद गुंबद और गुंबद के ऊपर सुनहरा कलश। हसीन सफेद गुंबद, हर किनारे से बड़े बड़े बरकी बल्ब से निकलने वाली पीली रोशनी पूरे महल में रंगो नूर की बारिश कर रही थी। बेशुमार मेहराबों के दरवाजे, महल के चार जानिब खाली जमीन पर मखमल से ज्यादा सुकून बख्शने वाली हरी घास। उसका दिल मचल उठा। वो चाह रहा था किसी तरह महल का दरवाजा खुले और वो सितारा को साथ लेकर अंदर दाखिल हो जाए। महल के हर मेहराब नुमा दरवाजे से दाखिल हो और निकले। ठंडी ठंडी और नर्म गुदाज घास पर टहले और टहलता हुआ सितारा से बातें करता रहे। फिर महल के बिल्कुल दरमियान में जाकर सबके सामने सितारा को गुलूगीर करे और पैमाने वफा बांधे, बेयकीनी के खात्मे का ऐलान करे। तमाम मंजिलों की सैर करके महल के गुंबदों को अपने हाथों से छुए। तीसरी मंजिल पर गुंबद के नीचे, निचली दो मंजिलों से ऊपर, जहां से सीधी तारकोल की सड़क और सड़कों के उस पार रेड लाइट से भी दूर, बहुत दूर पहाड़ के ऊपर कुछ इमारतें और रेंगती हुई गाड़ियां, आते जाते लोग, काले पीले टेम्पू और ऑटो नजर आ रहे थे। वहां जाकर खड़ा हो जाए। सितारा का हाथ अपने हाथ में ले, दोनों हाथों को ऊपर उठाए और नीचे वाले जज्बात से ममलू होकर तालियां बजाएं। वो हाथों को हिलाकर उनका जवाब दे। सितारा गोया उसके दिल की तमन्ना और मुरादों से वाकिफ था। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वो उसके आपे सरापे को बगौर देख रहा था, जैसे उसके नौजवान वजूद में एक दुनिया आबाद है, जिसमें दरिया का सा बहाव है, समंदरों का सा मौज और थपेड़ा है, रिवायत से बगावत की आग है। सितारा गौर करता रहा कि उसके अंदर मौजूद आग के शोलों को किस तरह समेटे और महफूज कर ले, ताकि जिंदगी के किसी खुनुक मोड़ पर वो काम आए। ये तो बंद है, चलो पीछे चलकर बैठते हैं। सितारा ने उसे महल की तरफ महव देख कर कहा, और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। महल के पीछे एक पार्क था। पार्क में एक मुजस्मा नसब था। पार्क की जमीन हमवार और मुसत्ताह नहीं थी। जगह जगह छोटे छोटे टीले थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर दरख्त थे। पार्क के बाहर सड़क के पार किसी महारानी के नाम के कॉलेज का बोर्ड बरकी रोशनी में नजर आ रहा था। आओ यहां बैठते हैं, सितारा ने उसका हाथ नीचे की तरफ खींचते हुए कहा, और वो सितारा के साथ एक दरख्त के साय में बैठ गया। वहां उन दोनों के अलावा शायद तीसरा कोई नहीं था। रह रह कर वो चौंक जाता, बातें करते हुए कभी जमीन को गौर से देखने लगता और उसकी जबान से निकल जाता नाक। फिर सितारा हर दलीलों का सहारा लेता और उसे बताता, यहां सांप ना नाग है, सिर्फ मैं हूं। सितारा की बात को वो सुनने और उसे देखने लगता। गोया सितारा के वजूद पर वो यकीन की हद तक पहुंच कर भी बेयकीनी का शिकार हो रहा हो। उसे लगता वो जब से पैदा हुआ है तभी से नागों और नागनों के

0: हिसार में है, वो उसे डसना चाहते हैं, वह लम्हा खौफ से दोचार है। सितारा ने उसे समझाया, दुनिया में सिर्फ नाग और नागन ही नहीं बसते, किसी पर तो यकीन करना ही पड़ता है, वरना एक लम्हा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। चांद चलता हुआ काफी दूर निकल गया था। चांद की रोशनी महल के दूसरे किनारे को रोशन कर रही थी। दरख्त के साए में कदरे अंधेरा था। वो सितारा की तरफ खिसक गया। सितारा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, उसे तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। सितारा को हंसता हुआ देखकर उसे लगा मोगरा के फूल उसके इर्द गिर्द काफी तादाद में खिल गए हैं। उसने अपने पैरों को फैलाया और सितारा की तरफ अपने कंधे और सर को झुका दिया। सितारा ने भी अपने पैरों को फैला दिया था, उसकी तरफ अपने कंधे को झुका दिया था। उसका सर सितारा के कंधे पर आकर टिक गया। सितारा ने अपने रुखसार को उसके सर से मस किया तो उसने जोश जज्बात में सितारा को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बदन में कहीं कोई सख्ती नहीं थी, होठ हिल रहे थे, जबान चल रही थी, हवा के झोंके के साथ मोगरा की खुशबू अब भी उसे सुकून पहुंचा रही थी। सितारा मुस्कुरा रहा था। चुप क्यों हो जाते हो, कहो, कहने से दिल हल्का होगा, जहन से गुबार छट जाएगा। और फिर उसने घुटी घुटी आवाज में कहना शुरू कर दिया, हर तरफ नाग हैं, बस नाग जो मुझे डसना चाहते हैं, उनका फन मेरे जिस्म तक आ तो जाता है, लेकिन मैं होशियार हो जाता हूं। जहां कहीं जाता हूं, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, हर जगह मुझे नाग ही नाग नजर आते हैं, जो मुझे डसना चाहते हैं। मुझ में क्या है ऐसा जो वो मुझे मार देना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे वजूद में अपना जहर भर कर मुझे जहरीला बनाना चाहते हैं। कहते कहते उसका जिस्म ठंडा होने लगा, पसीना आने लगा। उसने सितारा को दबाने की कोशिश की। जब वो बोलते बोलते चुप हो जाता तो सितारा बातों को मरबूत कर देता। उसका सर सितारे के कंधे से नीचे की तरफ लटक कर सितारा के सीने के करीब पहुंच चुका था। इसके बावजूद उसके वजूद में कोई हलचल नहीं थी। सितारा ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर वही हाथ आगे बढ़ाया और उसके रुखसार को मस करते हुए उसके चेहरे को दोबारा सितारा के कंधे तक पहुंचा दिया। उसने अपने सर को जरा देर के लिए उठाया, फिर सितारा के रुखसार से उसका रुखसार छू गया। सितारे ने बड़ी आहिस्तगी से कहा, मुझ तक पहुंचने का रास्ता उन नागों से होकर गुजरता है। उसे धूप की शिद्दत महसूस हुई, वो जाग गया। दिन काफी निकल चुका था, घर के सारे लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे, सितारा कहीं नहीं था, उसके इर्द गिर्द नागों का बसेरा था।
1: तो सामने भी आप सुन रहे थे नूरैन अली हक का ये अफसाना हसरतों के चिराग। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब वो सरप्राइज जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में किया था, यानी नायाब तोहफा। और वो नायाब तोहफा क्या है ये हम जरूर बताएंगे। चलिए बता देते हैं, कलामे शायर में मीना कुमारी की शायरी। क्यों हुए सरप्राइज आप लोग ना? बिल्कुल हुए होंगे जनाब। खूबसूरत आवाज, दिलकश अंदाज, क्या कहने उनके। इस अदाकारा यानी ट्रेजेडी क्वीन की अदाकारी के तो सभी कायल हैं, सभी दीवाने हैं, उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी। लेकिन इनकी शायरी के भी क्या कहने जनाब। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, सोजो गुदाज आवाज में और कहीं ना कहीं दर्द व अलम महसूस होता है। तो आइए उनके कलाम से महसूस होते हैं उन्हीं की आवाज में।
2: अकेलेपन के उसे बेकिनार सहरा में उलझी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए फिर वही मैं, वही चौराहा, वही बेनाम सुकूत, धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा। फिर से एहसास ने पहना है बेहिसी का लिबास, सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से, जवाब जिसका वही हैरान सी खामोशी है।

0: कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज, और जनाबे मन कैसी लगी उनकी शायरी और उनका अंदाज। हम तो दीवाने हैं उनके, बहुत अरसे के बाद उनका ये शायराना अंदाज हमें सुनने को मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी ये अंदाज जरूर पसंद आया होगा। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: सामने भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में विशाल शेखर की मौसीकी से जयनामा फिल्म है द डर्टी पिक्चर।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूब सूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

Yapsa Pentez Akaşvani Dehli.

0: क्यों रखा हुआ था जो कि 12,000 रुपये। तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि 12,000 से तो हमारा जो लद्दाखी टॉयलेट है वो नहीं बनेगा, या दूसरा जो हमारा फ्लश टाइप लेटरिन है वो भी नहीं बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना ये था कि भाई थोड़ा हम देते हैं आपको 12,000, आप अपना रुपये 20-30 हज़ार अपना डाल के आप अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि एक घर होता है उसके अंदर फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, उनके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो 12,000 इंसेंटिव है आप ये भी ले लो, प्लस आप अपनी फैमिली के लिए एक ड्राई टॉयलेट या एक फ्लश टॉयलेट। जहां से हमने इसका शुरुआत किया था 2014 के बाद, तो पहले पहले हमने फ्लश टाइप लेटरिन हमने बनवाए स्कीम के तहत, जिसमें हमने 4x4 का एक पिट रखा था, जो जिसमें कमोड और पाइप डाल के वो हमने हर हाउस होल्ड को, जो हमारे पास बेसलाइन सर्वे के मुताबिक जो हाउस होल्ड का हमारे पास जो लिस्ट आया था उस हिसाब से हमने पूरे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर जितने भी हमारे बेसलाइन सर्वे के अंदर आए थे उन सारों को हमने हर घर को जो है हमने SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन का ये जो बेनिफिट है ये हमने हर घर को हमने पूछाया और हर घर को हमने जो हमारा लेटरिन है जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं वो हमने इस SBM स्कीम के अंदर बनाया। तो इसका बनाने का मकसद यही रहा जो, क्योंकि हमारा हिन्दुस्तान बहुत बड़ा एक वसी मुल्क है, बहुत बड़ा देश है जिसमें हजारों लाखों में लोग बसते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का एक खूबसूरती एक ये भी है जो कि हमारे देश के अंदर है उसमें से 80% लोग गांव में बसते हैं, लेकिन हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी उन्हीं के लिए जो रूरल में बसते हैं, रूरल में रहते हैं, रूरल में अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर एक हाउस होल्ड को जैसे हमारा बेसलाइन सर्वे उस टाइम किया गया था उसी बेसलाइन में अगर एक गांव में 100 हाउस होल्ड है तो 100 लोगों के हमने इस SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन का बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से जो 12,000 का एक इंसेंटिव रखा हुआ था वो हमने लोगों के अकाउंट तक पहुंचाया। तो ये बनवाने का ये सब करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद यही रहा, जो भी हमारे बच्चे हैं या हमारे मेल हैं, फीमेल हैं या हमारे बुजुर्ग हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ये चीजें यहां बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी, लेकिन हिन्दुस्तान के बाहर इलाकों में पाखाना जो है बाहर खेतों में या दूसरे नालों में बाहर ही लोग जा रहा उसका पाखाना खुले में करते थे, खुले में शौच, तभी ये स्कीम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि लोग बाहर पाखाना न करें बल्कि अपने घर में आप टॉयलेट बनाया है, लेटरिन बनाया है उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, मेल हो, फीमेल हो। तो इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया जो। अब इसमें एक चीज रहता है जो उसके बाद हमने हर, जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल में आपको कहा कि अगर एक गांव में 100 हाउस होल्ड है तो उस 100 के लिए हमने 100 लोगों को अपना टॉयलेट बनाने के लिए उसका हमने SBM के अंदर बेनिफिट पहुंचाया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो बाहर से टूरिज्म आता है या हमारे दूसरे गांव से, तीसरे गांव से, चौथे गांव से लोग आपके अगर जिस गांव में आ जाते हैं क्योंकि वो बाहर के लोग होते हैं, तो उसके लिए हमने CAC बनाए जो हर गांव में, CAC का मतलब है जो कम्युनिटी सेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, यानी उसमें हमने एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए 2 टॉयलेट बनाए, वो भी उस जगह पे जहां पे लोगों का रश रहता हो, जैसे आना रहता हो या रश रहता हो, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम जांगरा, जहां पे अक्सर लोग वहां दिन भर बैठते हैं या आते जाते रहते हैं, या हमारा बस स्टैंड जैसे, तो इन चीजों में हम लोगों ने CACs बनाए ताकि हमारे जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज रहे कि वो किसी के घर को न ढूंढे या कहीं बाहर पाखाना न करे, इसलिए CAC बनाने का हदफ यही है जो। एक दूसरा ये रहा जो कि जो लोग अपने घर में हैं वो तो अपने घर का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, गांव वाले ही अगर बाहर जब रहते हैं पेशाब करने का मन करे या पाखाना करने का मन करे तो वो क्या करते हैं, कहीं खेत में घुसते हैं या किसी नाली में घुसते हैं या इधर उधर जाके गंदा करते हैं, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर गांव में कम्युनिटी सेंट्रिक कॉम्प्लेक्स है उसका नाम, तो वो बनाया ताकि एक तो बाहर से आने वालों के लिए फैसिलिटीज रहे, अगर आपके गांव में टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज रहे, प्लस जो आपके गांव के लोग जो अक्सर या मर्द हो या मेल हो फीमेल हो अगर बाहर कहीं रहे तो उस CAC का वो इस्तेमाल कर सके ताकि आपका गांव का जो एरिया है वो गंदा ना हो।
1: तो हाँ साहब, जो अभी स्वच्छ भारत मिशन है एक मिशन मोड पे अभी चल रहा है, मतलब आपने कहा कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, कम्युनिटी बेस पे भी करते हैं, जिसका मेन एम्फेसिस है कि ओपन डिफिकेशन कम हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं?
0: जो जो इसमें मैं एक चीज और इंश्योर करना चाहूंगा कि 2014 से हमने इस स्कीम का आगाज किया, उसके बाद हमने बेसलाइन सर्वे बनाया, फिर हर हाउस होल्ड को हमने इस 12,000 का जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हमने हर हाउस होल्ड को पहुंचाया, उसके बाद हमने दूसरा काम किया कि CACs बनवाए ताकि बाहर वाले, अंदर वाले, बाहर इधर उधर

0: गांव के एरिया में गंदा ना करें, उसका इस्तेमाल करें। तो तीसरी चीज हमने यहां पे करगिल, खासकर हमारा लद्दाख एरिया को, जो उस टाइम हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो हमारे जम्मू कश्मीर हुकूमत में 2016-17 में हमारे लद्दाख को, जिसमें से हमारा करगिल और हमारा लेह को डिक्लेयर किया ओपनिफिकेशन, यानी फ्री हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने हर हाउस होल्ड किसका बेनिफिट पहुंचाया है, तो हमारे जब जम्मू कश्मीर हुकूमत थी, उन्होंने 2016-17 में इसको जो है, खासकर हमारे लद्दाख को, लेह और करगिल को, जिसमें से करगिल की अगर मैं बात करूं, हमारा टीएचजी ब्लॉक और द्रास ब्लॉक आए थे फर्स्ट उस पर ओपनिफिकेशन फ्री पे, ओडीएफ पे। तो इस तरह हमारे जम्मू कश्मीर ने हमें ऐलान किया। उसके बाद ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका है। तय दो भाई जब अलग हो जाते हैं, उनके लिए भी हम इंश्योर करते हैं कि उसको भी इस मिशन का जो है, जो इंसेंटिव है, जो 12,000 रुपया, वो उस तक भी पहुंचे, ताकि वो भी अपने घर में अपना टॉयलेट हो या अपना अच्छे से करके उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल हो, ताकि हमारा जो बाहर का एरिया है वो ज्यादा गंदा ना हो जो। तो उसको जब हमारा ओडीएफ हुआ, इसमें हमारा जो लद्दाख या करगिल या लेह डिस्ट्रिक्ट, तो जब हम ओडीएफ हो गए हैं, उसके बाद इसका थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है सर, उसको बोलते हैं हम आईएचएसएल, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन। क्योंकि आप यहां 2016-17 के जब आप ओडीएफ हुए हैं, और उससे पहले जो आपके जितने हाउस होल्ड आप सालों को आपको इसका बेनिफिट मिला है, तो उसके बाद जो आज तक, जो आज हम 2026 में हैं, आज भी जब भी वहां किसी गांव के अंदर, किसी पंचायत के अंदर दो भाई या तीन भाई जब अलग हो जाते हैं, उनके लिए भी हम अपना रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि उनको भी टॉयलेट बना के देता है। तो ये स्कीम चलता रहा जो, तो अभी उस ये इसका आईसीएल के बेनिफिट लोगों को अभी भी हम दे रहे हैं, लेकिन 2020 में SBM फेज सेकेंड आया जो, उसके बाद SBM फेज सेकेंड आया, तो SBM फेज सेकेंड नाम यही रहा जो, SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकेंड। तो फेज सेकेंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें डायरेक्शंस मिला कि चलो भाई, आप लोगों ने लोगों को पखाने के लिए आपने अपना टॉयलेट बना सहूलियत दे दिया, बाहर के टूरिज्म या जो बाहर रहते हैं उनके लिए आपने कम्युनिटी सेंट्रिक कम्प्लेक्स बनाए। तो अब उसके बाद 2020 में जो है इसका फेज सेकेंड शुरू हुआ। तो फेज सेकेंड में हमने एक कोशिश की, जैसे हमने हर हाउस होल्ड को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने घर टॉयलेट बनाने के लिए हमने उनको इंसेंटिव दे दिया, वैसे ही हमने फेज सेकेंड के अंदर हमने एक कोशिश की, हर घर को हमने स्वॉग पिट बनवाई। हमने कन्वर्जन रखा एमजी नरेगा के साथ, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एक जो स्कीम है जो पिछले 20 साल से चल रहा था, अब जो हाँ वीवीजी राम जी जो अप हुआ है, तो उसके साथ कन्वर्जेंस करके हमने हर हाउस होल्ड को सेमली, हर हाउस होल्ड को हमने एक स्वॉग पिट बनाया, जिससे हमारे घरों के अंदर जो आपका वॉशिंग मशीन का पानी है, आपके कपड़े धोने का पानी है, आपके बर्तन धोने का पानी है, जहां से आपका ब्लैक वाटर पैदा होता है, तो उस ब्लैक वाटर को, उससे पहले क्या होता था कि कहीं नाली होती थी, नाली से गुजरकर वो आगे पीछे निकल जाता था, लेकिन जब से हमने स्वॉग पिट बनवाए, तब से आपका ब्लैक वाटर जो है, ये वॉशिंग मशीन का हो, आपका बर्तन धोने का हो, कपड़े धोने का हो, तो वो सारा पानी के लिए हमने स्वॉग पिट बनवाए, ताकि हर हाउस होल्ड का जो ब्लैक वाटर निकलता है, जिससे वहां पे आपके मच्छर जमा हो जाते हैं, जिससे आपके बच्चों के लिए डायरिया का खतरा रह जाता है, या हाइजीन का खतरा रहता है, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि हर हाउस होल्ड को SBM फेज सेकंड के अंदर जो है हमने स्वॉग पिट बनाए, ताकि जो ब्लैक वाटर है, जो गंदा पानी है, वो बाहर आंगन में या रोड में या किसी ग्राउंड में न फेंके लोग, बल्कि वो सीधा उस स्वॉग पिट में चले जाए, जिससे उस घर का आंगन साफ रहेगा, फिर दूसरे घर का दूसरा आंगन साफ रहेगा, तो उस तरह से पूरा गांव का जो माहौल है वो साफ रहे।
1: तो हर साहब, इसमें एक चीज अभी वेस्ट मैनेजमेंट का भी आता है, जो जितना हम वेस्ट घर से निकलते हैं उसको भी मैनेज प्रॉपरली, स्वच्छ भारत अभियान में एक इनिशिएटिव है कि उस वेस्ट को मैनेज करें, और खासकर पर्टिकुलरली लद्दाख जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सेंसिटिव और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, क्या लगता है जो कारगिल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट सेग्रीगेशन, क्लीनलीनेस और साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, उसके लिए क्या इनिशिएटिव?
0: रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक हदफ रहा है, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कीम्स है, हमारी कोशिश रहती है कि हर फर्द के लिए वो स्कीम पहुंचे, हर घर के लिए पहुंचे, ये नहीं कि दो चार रिश्तेदार या दो चार दोस्त यार को ही नहीं, हर फर्द को, हर फर्द, जो हमारा इंडिविजुअल स्कीम होता है, हम इंडिविजुअल हर फर्द तक पहुंचाते हैं, ہاؤس ہولڈ میں جو کوئی اسکیم ہوتی تو وہاں ہم ہاؤس ہولڈ تک پہنچائے. تو ہمیشہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جتنا ہو سکے ڈپارٹمنٹ کے جو نیشنل اسکیمس ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے سوگ پٹ بنوائے 2021 میں اسٹارٹ ہم نے وہاں سے کیا ہے. 2021 میں یہاں پہ آپ تیچیمک سے تھوڑا آگے جائیں گے رنگ موسپنگ کہا جاتا ہے اس لوکیشن کو, وہاں پہ ہم نے

40 बाई 30 का एक बड़ा हमने एक हाल या जिसको हम सिग्रीगेशन शेड कहते हैं, उस शेड को हमने वहां पे 2021 में कंस्ट्रक्शन किया और 2022 में हमने हमारा जो अभी आप कह रहे थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आप लोगों के पास क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो शुरुआत हमने 1 जून 2022 को ये जो वेस्ट प्रोसेस है हमने यहां हमारे रिम्बोस्मा से हमने शुरू किया। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया उसके लिए हमने हमारे मिंजी और शिलिक्से को हमने प्रेफर किया क्योंकि ये थोड़ा नजदीक थे। तब तक हमें भी समझ नहीं थी कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें करना क्या है, तो सारा वेस्ट जमा करके उसका क्या करना, क्या जलाना है, फेंकना है वगैरह। तो उसके बाद जब हमने ये काम 2022 में हमने जब स्टार्ट किया तो पहले हमें बहुत सारे चैलेंज हमें ज्यादा फेस करना पड़ा क्योंकि हमारे पास गाड़ी ही नहीं थी। हमने

0: सो हम उनको अपने वेंडर्स के लिए भेज देते हैं।
1: तो साहब स्वच्छ भारत अभियान का मेन मोटिव है
0: बिहेवियर चेंज। बिल्कुल,
1: आपने कहा कि हमने मतलब डस्टबिन भी घर घर में दिया है, टॉयलेट भी आपने बनाया है, आप अवेयरनेस भी करते हो, क्या चेंजेस नजर आता है आजकल, आज 2014 से आज 2026 तक
0: जी,
1: क्या चेंजेस आपको लगता है?
0: 2022 के बाद, क्योंकि हमने जो सॉलिड वेस्ट है उसको हमने 2022 के बाद स्टार्टअप किया है, 2022 से अब 2000 जो हम 26 में जा रहे हैं, तो इसमें तब और आज की डेट में बहुत सारा अंतर, जो क्योंकि हमने पहले ही फील्ड में हम काम कर चुके हैं, उस वक्त लोग बिल्कुल महसूस ही नहीं करती है कि वहां पर अगर कोई बिस्किट खाए या ठंडा पानी पिए या प्लेन वाटर पिए, तो हमारे बच्चों में हो या बड़े लोगों में, बच्चों की बात ही नहीं, बड़े लोगों में बिहेवियर इतना गंदा था कि जहां है वहीं फेंको, उनको बिल्कुल दिमाग में या सेंस ये नहीं था यार इस वजह से हमारा जो एटमोसफेयर है यहाँ या हमारा इन्वायरमेंट है या हमारी गली ही ले, चलो आप इन्वायरमेंट के लिए ना सोचे, आप अपने भी इसके लिए नहीं सोच, गांव के लिए ना सोचे, कम से कम आपका जो जहां आप बैठा हुआ है वहीं उसी एरिया को तो कम से कम आप ख्याल में रखें कि ये गंदा हो जाएगा। तो तब से 22 से अभी तक लोगों का बहुत बिहेवियर चेंज हुआ है। इसी फर्स्ट वीक में आपने देखा होगा स्वच्छता ही सेवा में हमने एक प्रोग्राम चलाया, तो इधर उधर जो थोड़ा बहुत कचरा था उसको हम कहेंगे थोड़ा बहुत जो बच्चों ने फेंका होगा या हवा ने इधर उधर किया होगा, लेकिन लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज है, क्योंकि वीकली जो मैंने आपको कहा कि हमारा गार्बेज का लोगों को डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाती है, तो भाई गलती से हमारा ड्राइवर बीमार या कभी गाड़ी खराब होती है, लोग फेंकते नहीं है, तो ये इससे साफ पता चलता है कि लोगों का बिहेवियर कितना चेंज हुआ। फेंकते एक तो लोगों में फेंकते नहीं है कि गाड़ी नहीं है, नहीं भाई आप गाड़ी तो आई नहीं आई इसको जलाओ या इसको फेंको, ये चीज लोगों में बहुत चेंजिंग हुई है। और दूसरा चीज, अगर आपका एक डस्टबिन भर जाता है, जो आपके पास 30-40-50 लीटर के जो डस्टबिन है, अगर वो भर जाता है फिर भी लोग नहीं फेंकते, वो अपने घर में एक बोरी इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां से भर गए तो उस जो बाकी के जो रहा कचरा है एक एक्स्ट्रा, वो अपने बोरी में डालकर रखते हैं और वीकली जो उसके डोर में जब हमारी गार्बेज व्हीकल वहां पहुंचती है तो उसमें डाल के हमारा सिग्नेचर सेंटर लाया जाता है।
1: तो साहब इसमें एक चीज है कि हम आपको बताए करगिल एक ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक चेंज चैलेंज कितना है करगिल, तो एक हाई एल्टीट्यूड टेरेन है, अगर हम हैबिटेट देखें तो बिल्कुल स्कैटर्ड है, एक दूसरे से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है जो भी हमारे विलेजेस है, सर्दी हमारा बहुत टफ है जो बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको पता है क्या हालात है हमारे यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से हमें दूर दराज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम हमेशा रहता है जो, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इस चीज को कामयाब करने के लिए, खासकर सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए?
0: जी जी जी एनआई साहब, इसमें जैसे आपने विंटर हर्ष की बात की, तो विंटर के लिए हमारे पास जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो हमारा गाड़ी जा नहीं सकता है, अगर हल्की बर्फबारी हल्का बर्फ है रोड क्लियर है तब जाके हमारा गार्बेज जो है वहां डोर टू डोर कलेक्शन होके आ जाता है। लेकिन मैंने पहले बताया, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को इतना अवेयर और इतना अवेयरनेस और इतने अच्छे लोगों की हालत बदल चुकी, हमारा सिग्नेचर सेंटर लाया जाता है।
1: तो साहब इसमें एक चीज है कि हम आपको बताए करगिल एक ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक चेंज चैलेंज कितना है करगिल, तो एक हाई एल्टीट्यूड टेरेन है, अगर हम हैबिटेट देखें तो बिल्कुल स्कैटर्ड है, एक दूसरे से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है जो भी हमारे विलेजेस है, सर्दी हमारा बहुत टफ है जो बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको पता है क्या हालात है हमारे यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से हमें दूर दराज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम हमेशा रहता है जो, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इस चीज को कामयाब करने के लिए, खासकर सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए?
0: जी जी जी एनआई साहब, इसमें जैसे आपने विंटर हर्ष की बात की, तो विंटर के लिए हमारे पास जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो हमारा गाड़ी जा नहीं सकता है, अगर हल्की बर्फबारी हल्का बर्फ है रोड क्लियर है तब जाके हमारा गार्बेज जो है वहां डोर टू डोर कलेक्शन होके आ जाता है। लेकिन मैंने पहले बताया, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि लोगों को इतना अवेयर और इतना अवेयरनेस और इतने अच्छे लोगों की हालत बदल चुकी

0: टोटल मैं वही कह रहा हूं कि ये जो कारगिल ब्लॉक का जो सेग्रीगेशन सेट है जिसमें 12 पंचायत है,
1: 10 से 12
0: टन सीजनल में हम इसको वहां पे ला के उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उसको प्रॉपरली बेलिंग उसको पैकिंग करके हम पूरे सीजन में जो है एक साल की अगर मैं बात करूंगा 10 से 12 टन जो है वो हम अपने विंडर को देते हैं
2: वेस्ट
0: जितना भी हम जो घर लोग जो वेस्ट जनरेट होता है घरों में उस वेस्ट को ला के यहां सेग्रीगेशन प्लांट में ला के उसको हम प्रॉपरली उसको सेग्रीगेट करके बेलिंग करके उसको हम अपने वेंडर को देते हैं। तो इससे आप बखूबी आप इससे पता लगा सकते हैं कि अगर लोग फेंकते इधर उधर गाड़ी में नहीं डालते तो इतना वेस्ट जनरेट आपको नहीं होता। और साल में हर सेग्रीगेशन की बात अगर हम 10 से 12 टन रखेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोग कितने अवेयर है और हमारा जो गार्बेज व्हीकल है उसका प्रॉपर उस लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: तो साहब बहुत अच्छी बातें आपने कही कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कितना कामयाब हुआ है कारगिल में खासकर। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने आपकी इन बातों को सुन के फर्दर सफाई एक कम्युनिटी या एक एडमिनिस्ट्रेशन का या डिपार्टमेंट का सोल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, हम सब का इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है, हम सब बराबर के शरीक हैं साफ सुथरा माहौल रखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पब्लिक आगे आके फर्दर और अच्छा इस चीज को कामयाब करे, इस मिशन को कामयाब करे और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सफाई और साफ सुथरा एक माहौल रखने का जो अज़्म है वो अपने जिंदगी में इम्बाइब करे, कामयाब करे अपने आप को इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, हाँ, माहौल में इस्तेमाल करने में, या खुद भी साफ सफाई को अच्छे से प्रैक्टिकली इसको अमल में लाएं और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। तो हाँ साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ भारत मिशन जो कारगिल में आज तक काम हुआ उसके बारे में हमारे लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह कल हम और एक स्कीम के बारे में और एक ऑफिसर से आप लोगों तक गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी करगिल ग्रहलिकान दसना बंचुत बिन फसपा प्रोग्राम सेवा संकल्प प्रोग्राम श्रोताओं से फर्चुखान पिन बिन इनायत अली मीरे में कद आकाशवाणी करगिल

بسم الله الرحمن الرحيم.

Sanchez la pulte en pin.

0: बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़

0: करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप वन का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the authority will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%
2: एज द कंट्री जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8% द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलॉन्ग विद न्यू रेलवे लाइन्स वाटरवेज पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी एंड प्लान ऑल दीज एस्पेक्ट्स
1: एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा.
0: The government has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. The cabinet today also passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of the government. The Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high altitude platform. On its successful flight trial, Defence Minister Rajnath Singh congratulated the team, saying it is an important milestone in India's Atmanirbhar Bharat journey towards realising a long endurance stratospheric airship. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category.

0: 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
2: हेलो मम्मा।
1: हाय।
3: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: कम सूद पर लोन चाहिए, वो भी ऐप से?
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ।
4: फसी।
6: फर्जी ऑफर से होशियार।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

0: हेल्थ डिपार्टमेंट नी तरफ नंगा पब्लिक हागो चूस की अच्छी दे नीचो नीचो सिक्किम मुझे दे रहा वी बी जी राम जी उससे पहले अच्छी दे दे रहा नरेगा है ना नरेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दसन 2026 में वी बी जी राम जी लॉन्च चूस इन जेरा तो रे मसा पुरा दे इन जेरा जानी गाँव ही सतह का यहाँ निशानदेही ताचा है ना सुनते सुनते रूट लेवल लागो तासे सुनते सुनते लासुन बस मी रूट लेवल मुश्किल दूर बस
1: अगर
0: मुश्किल छो हाई लेवल ची ना मो मे लेवल ची ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल ब्लॉक पंचायत लेवल प्लान से तो दून सागा प्लान से गवर्नमेंट करना दो सेंशन क्यों से और दून सागा
1: आवामी
0: शिरकत पोंगी रेटिंग मुकर मौजूदा ऐसी तरह डेवलप दो ग्यारह डेवलप लुसा दो ग्यारह मौजूदा ऐसी तरह तो रूल लेवल मुख्तलिफ सिक्किम आपस में कन्वर्जन दो ग्यारह
1: बिल्कुल
0: दून गाने का नाचल दो तारीख का तमाम संघ पंचायत गरी का गला बस हागो था
1: बिल्कुल
0: तो इनशाला हागो निका खो आगे कदम लेने इनशाला
1: बिल्कुल छा सर जरे दी कैंपेन बुखोरा सबकी योजना सबका विकास जरेगा खातुसपो या थीम पोजा से दुख छान सर दरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अनुक चाम से गिरजा यौन यंग प्लानी अनुक दरे चेंजेस रिक्थो से न सर लोनांग बच दिचिक यंग लोकसु प्लान रिगांस चुए सांबर युति न
0: लोकसो प्लान रिक लोकसो प्लान या नाचा सेरा मतलब यंग डिपार्टमेंट उन्हें नाचा सेरा फिशरीज जैसा कि फिशरीज डिपार्टमेंट ही एरा खो कन्वर्जेंस का तो नाचा दू नाचा यदि एरा चिका वीबीजी रामजी क्यों सिंह
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: छोट चोला यंग एयर डिपार्टमेंट लवा ग्रीन हाउस अंगाचास मतलब वीबीजी रामजी राशन लवा ग्रीन हाउस अंगाचास
1: बिल्कुल छा सर दरे ट्रांसपेरेंसी चाम चुत खास कर वी बी जी राम जी स्कीम यादों में बाकी कन्वर्जन बस दरसा फिशरीज या दनान सुखला एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सुनिंग ना ट्रांसपेरेंसी नजुम से चाम से दरे ओशन सांसा सोसे सर
0: दासन जो सोच रहा दिया नु यरा डिप्लोमेसी छोटी मेरा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो दिया नु हाजिरी ऑनलाइन जो सिंह अच्छा जरा कोई आइस हेज गंगमा कुटू ऑनलाइन फोटो सोच से वो आपको ऑनलाइन चिका सोच उसमें उसमें कोई दर्शन कोई प्रॉब्लम नहीं की कोई हजरी माता तुम सोच वो सबसे अच्छा है कि हाँ लॉन्च हो गया या
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: कैसा फैश अट्रैक्शन जो है उसको कैसा
1: छाना गा जगह इंटरनेट मैं ना कहता दे माल से अच्छी बात सर ना इंटरनेट कनेक्टिविटी
0: जगह खर्ची कर तीन सौ लू ची गो पास वहाँ वो करके आता है प्रॉब्लम मिल तू गा थोड़ा इश्यू है लेकिन उसको वो खुद की जगह में हल करके आता है
1: छाना सपा दरे असगर अली साहब सलपन मोमलिन बीडियो सांकुस सबकी योजना सबकी विकास इसकोटला गवैनुक पीपल्स प्लान का गब्जग्रोस बसे मीमांसो ग्रास बसे सोमा प्लान स्ट्रेटेजी रिचो से रायस्ट तुंची बसे आबाद बच्चा जिंची बसे गोयर उचा संबन अश्मिको से नंग दैनान सोला सांको सब डिविजन या नंग थादुम्बोर पंचायती का ग्रब्स बसे दिसो गई हगोन सलीन सुग और मितु सुनुक दूनी का एग्जीक्यूट बसे लसांग बच्चा असगर अली साहब नचनबो थुत पिमिंगनायराजू सरिंगमो तेसरू इलाके कोचगी युल्ला लिंग रोड दरा सखपा मिर्चो चस्पोज मीमा सुनला लेगी स्कलस बरदो थोनो तीन फससांग खोपंगिरिम अमाउन या दनाना सुखला सुकुल लछे प्रोबस बिसुनला लेगी स्कलस बरदो तीन दोनाजोम से खोयस खुंती नक्स बरदोन आकाशवाणी करगिल नागरगन दिजल मोल्स
2: कोसे मचा शी के असर चाह हालात

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
5: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
6: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
7: प्रोग्राम में कारगिल है इंतजाम बिन चुतबिन मोहम्मद मूसा शितना मीडिया में सोची नगबियान यशुज बिन अबजी कोला हर्ट्स मीडिया में उत्तरगियान यशुज बिन अबजी कोला हर्ट्स FM 11.1 मेगाहर्ट्ज दोनों मोबाइल ऐप न्यूज और नारेकांच आकाशवाणी कारगिल का नजर नुत वस्पोशाम बाजार दोनों ने मिनन शोर सगा चंदुकपुर की खबरों ने मजद
8: लेमा नदी तो पॉलिसी जिसको नजर गानुक प्रीमियम मिनसे बोनस और ग्याला तो तुक यंग रंगमा चंचो पीएलआई योत खनला सरकारी लस्कुम पन यंबो यंबो प्रोफेशनल सर्विस दोना ग्रेजुएट दोना डिप्लोमा होल्डर उल्लालेन मंगेन चाइन पीएलआई पॉलिसी फंड के यंग पोस्टल डिपार्टमेंट ने भरोसा रंगी निमोल ले खन पोस्ट ऑफिस न दिरिंग खोरा थुत पजत या मिन्ना लॉगिन बाजत indiapost.gov.in का

0: जरूरत के लिए पैसे। SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा मरकजी काबीना मीटिंग के दौरान कई अहम फैसलों को मंजूरी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का मुल्क की दिफाई सलाहियतों को दवाम बख्शने के लिए एक मजबूत और मरबूत मैरीटाइम इकोसिस्टम इख्तियार करने पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 25 अक्टूबर को मुनक्कद होने वाले इंटरनेशनल मैराथन के सिलसिले में तैयारियों का लिया जायजा और दूर उफ्तादा और सरहदी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करने के लिए BSNL मोबाइल टावरों की तंसीब के लिए जमीन फराहम करने को हुकूमत की मंजूरी। पेश है खबरों की तफसील। नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक़द हुई, जिस दौरान मुल्क में SME ग्रोथ फंड के क्याम के लिए हुकूमत के 10,000 करोड़ रुपए के हिस्से को मंजूरी दी गई। बावर किया जा रहा है कि इस पहल से मुल्क का कारखानादारी निजाम मुस्तकम होगा और विकसित भारत 2047 के ख्वाब को शर्मदाय ताबीर करने में भी मदद मिलेगी। काबीना मीटिंग के बाद इतलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के कयाम को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले की बदौलत ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के सेक्टरों में तहकीक, मनसूबाबंदी और निगरानी का अमल मजीद पायदार रहा। दरियासना मरकजी काबीना ने हुकूमत की 25 बरस की क्यादत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 25 बरस मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पानी की यकीनी फराहमी महज बुनियादी ढांचा तामीर करने का अमल नहीं, बल्कि यह बेहतर मनसूबाबंदी, मजबूत कौमी निजाम और पानी के बेहतर रखरखाव में लोगों की शमूलियत का

में अमलाई जा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद जल शक्ति महकमे की तरफ से इस वक्त मुख्तलिफ अजला में 30 वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम शद्दोमद से जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह बाटी ने कहा है कि जरई शोबे में जदीदियत के साथ साथ किसानों के डिजिटल इकतसादी और कानूनी हकूक की पासदारी को भी

0: ने कहा कि जरूरी शोबे के तमाम वसाइल को बरूई कार लाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अमल में सूरत लाई जा रही है। नेशनल अलायंस ऑन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के एक वफद ने आज कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथिर के साथ मुलाकात की और उन्हें जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने में उनकी मुदाखलत तलब की। वफद में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे शामिल थे। स्पीकर मौसूफ ने वफद को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलों को मुतलका हुकाम के साथ उठाया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर अजम के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजे हो जाती है। इस खसूसी सीरीज के सिलसिले में समाप्त करें शुमाल मशरक के खत्ते की तरक्की से मुतलिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
1: शुमाल मशरकी रियासतों को शोरिश और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से आजाद करने और खित्ते में तामीर तरक्की का एक नया दौर शुरू करने की गरज से वजीर अजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार ने गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान मुतअद्दिद इकदामात किए हैं। किसी जमाने में निस्बतन कम तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार किया जाने वाला यह खित्ता अब तरक्की और रवाबित के एक नए दौर से गुजर रहा है। मरकजी सरकार ने इस खित्ते को तरक्की की तरजीहात में नुमाया मकाम दिया और सड़क, रेल, फिजाई और डिजिटल रवाबित को मजबूत बनाने पर खसूसी तवज्जो दी गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक शुमाल मशरक में कौमी शाहराओं की लंबाई साल 2014 के करीब 10,900 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 16,200 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। हुकूमत ने पीएम डिवाइन स्कीम के जरिए बुनियादी ढांचे, रोजगार और समाजी तरक्की के मनसूबों को भी फरोग दिया है, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत शुमाल मशरक को जनूब मशरकी एशिया के साथ तिजारत और राबते के एक अहम दरवाजे के बतौर तरक्की देने की कोशिशें जारी हैं। आकाशवाणी न्यूज के लिए नूरुलैन इशरत के साथ मैं शेख तजम्मुल।
0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वह हजरत अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक के सिलसिले में चरार शरीफ में तमाम इंतजाम मुकम्मल करें। उन्होंने हजरत मीर सईद लतीफुल्ला द्वारकी रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के सिलसिले में भी बिजली, पानी, सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात रखने की इंतजामिया से अपील की है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने श्रीनगर में एक फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों के साथ बात करते हुए कहा कि नौजवानों को समाजी बिदात से दूर रखने के लिए उन्हें खेल सरगर्मियों की तरफ रागिब करना वक्त की अहम जरूरत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा की सदारत में आज शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीवन नगर जम्मू में सेवा संकल्प अभियान के तहत एक रंगोली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि ह्यूमन रंगोली महज एक तख्लीकी पेशकश नहीं है बल्कि इससे एक मजबूत तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार भारत के तई नौजवान पोत के जज्बात की अक्कासी होती है। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने इल्जाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का हालिया इजलास बकौल उनके पूरी तरह से नाकाम रहा। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि ऐवान को एक सियासी अखाड़े में तब्दील किया गया और आम लोगों के मसाइल हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज बड़गाम और अनंतनाग अजला में 7 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। कुलगाम में भी पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। आज सेरिब्रल पैल्सी से तहफ्फुज और बेदारी का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद इस बीमारी से मुतलिक अवामी शऊर उजागर करना है। इस सिलसिले में दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में कई बेदारी प्रोग्राम और सेमिनारों का इनेकाद किया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से मतला अबर आलूद रहा। कई इलाकों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आने वाले 2-1 दिनों के दौरान बेशतर इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। इस ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबराह डॉ मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: जी बिल्कुल, अभी थोड़ा क्लाउडी वेदर है, लाइट रेन के चांस हैं जैसे एक्सपेक्टेड है और पहाड़ी इलाकों में थोड़ा लाइट स्नोफॉल और कल मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है।

0: फिर आर्ट को भी एक फीबल डब्ल्यूडी के कारण लाइट रेन के चांस हैं कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल। फिर नाव को आगे मौसम फिर से ठीक है, 10 के आसपास फिर से थोड़ा सा हल्की बारिशों के चांसेस हैं, थोड़ा फीबल डब्ल्यूडी के कारण बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी लाइट रेन के चांसेस हैं। और उसके बाद जो मौसम ड्राई है लगभग 13th ऑफ अक्टूबर तक, 14-15 के आसपास फिर से एक लाइट स्पेल की पॉसिबिलिटी है।
1: डायरेक्टर श्री कल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने उड़ी बारामूला में मुख्तलिफ देहात का दौरा करके वहां जारी सीरीकल्चर सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां किरमकशों के साथ बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि महकमा उनकी बहबूदी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। दर्ज हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 24.6 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:29 और गुरुब आफ्ताब शाम 6:07 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप सुनिए तबसिरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का सबक।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। बल्दियाती निजाम के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें तरक्की याफ्ता ममालिक में इनकलाबी नौयत का बदलाव साफ साफ दिखाई देता है। अमरीका हो या जापान, बरतानिया हो या फ्रांस, जर्मनी हो या इटली, वहां के शहरों की जदीदियत और चकाचौंध को देखकर लगता है कि हम किसी तिलसमाती दुनिया में आ गए हैं। इस हैरत अंगेज जिद्दत की तारीख को अगर खंगाला जाए तो मालूम होता है कि यह तब्दीली एकदम से नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे पॉलिसी साजों और शहरी तरक्की से मुतलिक माहिरीन की 100 बरस से ज्यादा अरसे पर मुहित वो अनथक मेहनत है, जिसकी बदौलत हम आज इन शहरों की खूबसूरती के साथ साथ यहां बसने वाले शहरियों की खुशी और इत्मीनान को देख पा रहे हैं, जिनको वो तमाम सहूलियात मयसर हैं जिनसे उनकी जिंदगी आरामदेह और मसाइल से पाक बन चुकी है। न यहां की सड़कों पर मुसलसल ट्रैफिक जाम नजर आते हैं, न गड्ढे और न ही बेहंगम निजामी कार। इन शहरों की इंतजामिया के लिए आवाम को एक ऐसा सिस्टम फराहम करना अवालीन तरजीहात में शामिल है जिसमें उन्हें कसाफत और आलूदगी से पाक माहौल मयसर रहे। और जहां तक रोजमर्रा की जिंदगी की बात है, आवाम को सड़क, पानी, बिजली और दीगर जरूरियात के हवाले से एक ऐसा निजाम फराहम किया जा सके जिसके जरिए आवाम को जरूरत की हर कोई चीज आसानी के साथ मयसर रह सके। आवाम की शिकायत का अजाला इंतजामिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है और छोटी से छोटी शिकायत या मसले का हल यहां मिनटों में मयसर रहता है। जब हम इस इनकलाबी नौयत की तब्दीली और जिद्दत का करीब से जायजा लेने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है कि इस कामयाबी के पीछे वहां की हुकूमतों की वो संजीदा कोशिशें हैं जो उन्होंने अवाम की खुशहाली के लिए सही वक्त पर बरोयकार लाए, ताकि उन ममालिक और वहां के शहरों में बसने वाले लोग एक आरामदेह जिंदगी गुजार सकें। इसके बरक्स अगर हम तरक्की पजीर ममालिक की हालत को देखते हैं, जिनमें हमारा मुल्क भारत भी शामिल है, तो साफ जाहिर होता है कि दीही या शहरी तरक्की की दौड़ में हम अभी भी इन ममालिक से कई गुना पीछे हैं। इस पिछड़ेपन के लिए हमारी किसी हद तक नाकस पॉलिसी साजी और सुस्ती जिम्मेदार है जिसने हमें आगे बढ़ने से रोक रखा है। इसके अलावा मनसूबा साजी का फुकदान भी वो बुनियादी वजह है जिसके नतीजे में हम किसी कदर पिछड़े हुए हैं। खुशायंद अमर है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने इस हवाले से बेदारी का मुजाहरा करते हुए हाल ही में कॉमन डक्ट पॉलिसी 2026 का ऐलान किया है। वजारती काउंसिल की तरफ से मंजूरी के बाद इस पॉलिसी का मकसद जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों के लिए एक ऐसा जामिया और मरबूत मनसूबा तैयार करना है जिसके तहत तमाम किस्म की जेर जमीन सरगर्मियों को एक ही झंडे के नीचे लाना है। ये एक ऐसा निजाम कार होगा जिसकी बदौलत पानी की पाइपों, बिजली की तारों, टेलीकॉम, गैस और दीगर नेटवर्क को एक मुश्तरक फ्रेमवर्क के ताबिया बनाया जा सकेगा, ताकि नई सड़कों की तामीर और पहले से मौजूद सड़कों के जाल की मरम्मत को इस कॉमन डक्ट सिस्टम के जरिए मरबूत बनाया जा सके। बिलाशक ये एक काबिल तारीफ कदम है और इसके जरिए सड़कों की बार बार की खुदाई के अमल से बचा जा सकता है। अक्सर देखने में आया है कि हमारे यहां मुख्तलिफ अवकात में तारें, केबल्स या नलके बिछाने के लिए सड़कों को

0: जय हिंद। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाई और दोस्तों के खत्म में हमारा प्यार भरा था। फौजी भाइयों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं प्रेम रोग फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
3: हेलो मम्मा।
1: हाय।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
8: सुगंध, क्या हो रहा है?
9: बिल हो रहा है।
8: चल अपना कार्ड दे।
9: पिन दे।
10: आरबीआई कहता है, अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनी, चौकन्न रहें।

फौजी भाइयों, प्रेम रोग फिल्म से आप गीत सुन रहे थे। आवाजें थी सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की। प्रोग्राम की अगली पेशकश प्यार झुकता नहीं फिल्म से गीत, जिसके लिए लता मंगेशकर का साथ दिया है शब्बीर कुमार ने। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये थे शबीर कुमार और अनुराधा पौडवाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। फौजी भाई, आपका प्रोग्राम जारी है। अगला गीत हम एक छोटे से वक्फे के बाद पेश करेंगे।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक पर, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ।
3: फर्जी ऑफर से होशियार,
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चाहिए
6: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है, अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
7: आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं, खबरों का उगदा चाहते हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षो पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से

0: नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।

0: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
1: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक कोड है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
3: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
2: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हाल्जेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना

0: leadership as head of government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Belgian-born scientist Francis Hausen wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असगर अली। हुकूमत ने कसीर रुखी मंसूबा बंदी को बरुए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मतवस्त कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे एमएसएमई शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराहान हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मुसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ रूपये के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में नागांव लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। बेल्जियम में पैदा हुए साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को फिजिक्स में 2026 के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 5 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अथॉरिटी के कयाम को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इतलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे में जब मुल्क की मजमुई घरेलू पैदावार GDP 7-8% की शरह से तरक्की कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुल्क भर में कई शाहराहें, रेलवे लाइनें, आबी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और नई बंदरगाहें तैयार की जा रही हैं। मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी अगले 10 साल को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती कौमी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि ये इदारा मुल्क में मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के आला तरीन इदारे के तौर पर काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: काबीना ने छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के छोटे और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के तरक्याती फंड के क्याम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि ये फंड कारोबार के काबिल और फलने फूलने की हामिल आला कदरों वाली छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए तवील मुद्दती सरमाया फराहम करेगा। इसके अलावा ये फंड खिदमात, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा पर मबनी शोबों और स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन की भी मदद करेगा। काबीना ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करने वाली करारदाद को भी मंजूरी दी। जनाब मोदी साल 2014 में वजीर आजम बने और कल वो हुकूमती सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करेंगे। इतलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत के इस्तेकाम की गवाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबीना मीटिंग के लिए फैसले एमएसएमई शोबे और अगली नस्ल के भारतीय सनती रहनुमा तैयार करने में अहम कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये फैसले एसएमईज को फलने फूलने, जदीद टेक्नोलॉजियों से हम आहंग होने, मैन्युफैक्चरिंग को उस देने, आलमी बाजारों में पहुंच बनाने और आलमी वैल्यू चेन से मरबूत होने के प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाज

0: उनकी नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि सियासी पार्टियों को अवाम के फैसलों को कबूल करना चाहिए और अवाम की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि वो अवामी हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद आईनी इदारों पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि आईनी इदारों को निशाना बनाना मुल्क और कांग्रेस पार्टी किसी के मफाद में नहीं है।
1: कांग्रेस पार्टी को 55 वर्ष इस देश में शासन करने का मौका मिला है और उसमें से 2 साल इमरजेंसी लगा के शासन किया और उस इमरजेंसी के समय में संविधान का प्रीएम्बल को बदल दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और आज ये लोकतंत्र की बात करता है।
0: इससे पहले आज अपोजिशन पार्टियों ने खसूसी नजरसानी के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबे को लेकर पार्लियामेंट से इंतखाबी कमीशन के हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन तक एहतजाजी मार्च निकाला। ताहम सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतखाबी कमीशन की जानिब बढ़ते हुए उन्हें आकाशवाणी के करीब रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर हामियों के साथ आकाशवाणी भवन में दाखिल हो गए और उन्होंने इहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उन कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया जो आकाशवाणी भवन के इहाते में धरना दे रहे थे। आज अपोजिशन के एहतजाज के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि सहपहर 4 बजे तक किसी भी सियासी जमात ने अपने नुमाइंदों के जरिए उससे मुलाकात का वक्त नहीं मांगा। एक प्रेस बयान में कमीशन ने कहा कि ताहम सहपहर 4 बजे उसे दिल्ली पुलिस से इतला मिली कि राहुल गांधी की क्यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफद कमीशन से मिलना चाहता है और एक मेमोरेंडम देना चाहता है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि 240 अरकान पार्लियामेंट के साथ इस मीटिंग की दरखास्त की गई थी और मुजवजा मकाम पार्लियामेंट एनेक्सी था। इंतखाबी कमीशन को यह दरखास्त गैर मामूली लगी जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कमीशन ने कहा कि जाब्ते के मुताबिक ऐसी मीटिंग इंतखाबी कमीशन के इहाते में होती हैं। तिब्बत का 2026 का नोबेल इनाम बेल्जियम में पैदा होने वाले साइंसदान फ्रांसिस हेल्जन को दिया गया है जिन्होंने जुनूबी खुद पर मौजूद बर्फ के एक बड़े जखीरे को खला से जमीन तक पहुंचने वाले पुरिसार जर्रात यानी न्यूट्रिनोस की दरियाफ्त के लिए एक डिटेक्टर में तब्दील कर दिया। 82 साल प्रोफेसर हेल्जन अमरीका की विस्कॉन्सिन मेडिसन यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिक्स के माहिर हैं। उन्होंने उस बैन अल-अक़वामी टीम की क्यादत की जिसने जुनूबी खुद पर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी तैयार की। ये एक न्यूट्रीनो डिटेक्टर है जिसने 2013 में काम शुरू करने के कुछ ही अरसे बाद जमीन के बाहर से आने वाले इंतहाई ज्यादा तवानाई वाले न्यूट्रीनोस की निशानदेही की थी। हुकूमत ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर चीफ मार्शल के रैंक पर 29वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकर्रर किया है। ये तकर्री 31 अक्टूबर की दोपहर से नाफिजुल अमल होगी। जनाब दीक्षित एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की जगह लेंगे। मर्दों के क्रिकेट में 5 T20 मैचों की सीरीज के तहत लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। वेस्ट इंडीज की टीम ने 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। अब से कुछ देर पहले भारत ने 5 ओवर्स में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कसीर रुखी मनसूबाबंदी को बरूएकार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मतवसित कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सिताइश की है कि इनसे MSME शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराहान हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

0: आकाशवाणी करगिल जो शिनार प्रोग्राम पुनर्गी सो मखोरो मुख्तार जाहिद सो मुशोहनो प्रोग्राम कोंडे ने ग्रारेगा सजारे मामलारे दीद जारे बुटुरे मई सलाम मीडियम एव पंजरे शलगे चरबी का चार किलो हर्ट्स मीडियम एव सच शलगे चरबी का चार किलो हर्ट्स एफ एम शाले शरी एक मेगा हर्ट्स तुने न्यूज ऑन ए आर डॉट कॉम जासो स्कोंडियो हनित आकाशवाणी करगिल रारेगा सजारे पुनर प्रोग्राम इस हीर अनि जिले जहानी बुडो यार सुस्मशकले कुंडे बजात शिना बाश यट चोल शिना बाश यट कनाई थे बेस तरक्की थोन तुने उथलियार थोन साधु के रारेगा सजारे अश एक मनाच के असे होते गानेस सो मनाच से एक नोम लिखा तो मुशाक हिंदुस्तानो एक एंथ्रो फिजिसिस्ट का तुने जो एक बड़ो नोम लिखा तो मुशाक असलो सेसी बारेगा असो एक मनाच से सोमुशो तोमी दश पेश थे बुजी सोमुशा हनो मेघनाथ सहा तुने अजू का सो मनाची हनो इनायत अली खान साहब आकाशवाणी करगिल मेरी में उजा जारेगा सजारे अखान खेन शतु तो बेस एक कलामे का सोमुशो पेश थे बुजन
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम

0: और असे होमसो करकितो तुने अनि अलाको शिनाबाश दिन शायरी का गाय मालेगा पोकिशी से सिसे हिस्सा गिनी तो में तहकीकाते तो में तखलीकाते मुशोद है शिनाबाशी खिदमत चौहने तो पशन किताबेगा रिया के शिनाबाश मजा जैसे छाप थे बोझा शायद थे बोझा एनी जेले जा तो में खिदमत श्रीन से चौहने तो कौन हनत होगा तो में मलई बाशी खिदमत थे बोझा डालेगा सजारे अनि चमाठ्यो बोझा की माँ अखान कचाग जिंदा शती तो एक मनु रू करे दुनिया ते मजा जीनत बेनी ए जीनत माँ बिल और ऐसे कर जी के ना माँ है तो मलई बाशनी बाशी खिदमत था बाश सी शुलगा मेहर मोहब्बत था जारेगा सजारे आकाशवाणी करगिले का नी बोथ हनी कि सुस्तो में तुम्हें बाशी खिदमत थे बजा मोहब्बत थे बजा जारेगा सजारे अन्य असली कम एक माँ बाशी बारे जा आकाशवाणी करगिले जो महानो सोमा खोरो सोमुशो शिना प्रोग्राम पुनर्गी असुजा एक मनाची के होते गानेस सो मनाची तो मी दिशी जा एक दशमाने खानू दुनिया तो चले चले कोई मजा हिंदुस्तानो चले चले कोई मजा कौन है एक बड़ी हस्ती एक जेनी से हस्ती से तोमी जिंदगी जो क्रोमित है जबाने जो क्रोमित है जरियार उन क्रोमित है बजी और से हस्ती एक नोम निखाती हस्ती एक दुलिया बजी शख्सियत एक दुलिया बजी तो एक शख्सियत एक मोगथी मलेकी हिंदुस्तान मजा आश जो बीगा चोई काल यर यानी 133 साल मुशोरे जाली से असली जारेगा सजारे से हस्ती असली मेघनाथ साहा थे मेघनाथ साहा अशबला बेसुशा अक्टूबर जर्रे सुजाल देश मान्यो हने से हिन्दुस्तान मजा तो रसी कार्यो जो क्रोमी थे गाओ रो करे जालो अनि बारे जा तफसीली अश रजोनी कार्यो से हो थे गाने से इनायत अली खान साहब इनायत अली खान साहब तुस तुम्हें दर्शकिनी असे जाल प्रोग्राम कुंडन करे अनु मेघनाथ साहि बारे रजीब तुमिष्ट भी मुस्तुरे शिवतु थे मुस अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम सबसे पहला थानो शुक्रिया नोजू थानवा ने प्लेटफॉर्म में जो बड़ा एक बुलाई था
0: जो थे मुस इनायत साहब तो अशालो तो इनायत साहब अनु मेघना साहा पशुनस की एक नोम लिखा तो मुशाखनो हिंदुस्तान में जा अश बेसु यानी शाख तो बरो शक रसो जाल उदेस मनु हनस हिंदुस्तान में जा रो कोई हनो अनि बारे जेक डाउ दे बता जेक के तुसे चालो छोरे बता
1: यह जो अश बेसु अनु 6 अक्टूबर उदेस मेघनाथ साहा छु एक पर्सनलिटी हूँ बड़ो पर्सनलिटी असलो इंडियन रेस है सो इस पहले तो रोई एक एस्ट्रो फिजिक्स असलो एस्ट्रो फिजिक्स मतलब फिजिक्स ब्रांच एक बिल
0: अच्छा
1: सद आमतौर पर बेंसु अनी तार अथुनस बेंसु स्टार्स इंग्लिश स्टार्स थनस बेंसु तार अथुनस सद जैसे रिसर्च थे रिसर्च मतलब अनी तार कनाबू ट्विंकल बिना कनाबू चमकाई बिना या रनी मतलब जैसनी यानी टेम्परेचर कनाऊ जैसे योग थना या कनाबू प्रयोजन से जैसे रिसर्च था लो जैसे रो कामयाबी का कामयाब गबिलो नोमिक छुराओ सनो मेघनाथ आयोनाइजेशन थर्मल थर्मल आयोनाइजेशन या सहा आयोनाइजेशन इक्वेशन रेसो आस रेसी नोम दो ऐसी नला नला रेसी निशने लाइफ है पत्नियों धीरे धीरे एक पॉलिटिशियन गफिर जुलो तो सो मेघनाथ सहा में सो सीधा थोन की एक साइंटिस्ट कसूल छोटा मोटा एक साइंटिस्ट प्लस एक पॉलिटिशियन कसूलो
0: अच्छा यानी कि नोम लिखा तो साइंटिस्ट साइंसदान डाउ था को तो रो एक मेघना साहा एक नोम लिखा तो साइंटिस्ट का सुलो सदो की पत्नियों एक
1: पॉलिटिशियन
0: का सुलो एक सियासी मनोरु का सुलो रो कौन जालो और कनी दिशी जा जैसी तालीम हासिल देखो अनिवार्य कम एक रोशनी दे बता
1: यह जुया रो बेंसु पशुओं नस आज से 100 साल पहले बेंसु किताब बेंसु पशुओं को नस रजुओं को नस की इंडिया जो कास्ट सिस्टम से चली हिंदुज्म है खासकर असनी रहे तुमने असली कास्ट सिस्टम हिंदुज्म है असली
0: कास्ट सिस्टम जात पात
1: बड़ी जात थे लोअर कास्ट अपर कास्ट अनटचेबल सो आता पुअर गोर के जालो
0: अच्छा
1: वही रो लवर कास्ट का सुलो अछूत खारी खरी जात का सुलो
0: अच्छा
1: सदरो जालो इंटेलिजेंट बालक का सुलो वही निशानो को सजार कम से कम 8 नफर असिले
0: अच्छा
1: रो जाला लो जो से टाइम है गाजीपुर से जगह कसली बंगाल प्रेसिडेंसी जा
0: अच्छा।
1: से उस टाइम पे इंडिया ले असली लेकिन कोते बांग्लादेश जही ढाका बिन सीधा खुश ढाका थोनिया से पहले इंडिया जसली पन्नो जब डिवाइड मिले डिवाइड बोन तो से बांग्लादेश
0: 1971 जे खजगी मशरकी पाकिस्तान के असली से अलग बिली थे
1: अलग बिली से टाइम में
0: अच्छा
1: अलग बोन तो

0: मगर आजादी मुठोर जालू,
1: आजादी मुठोर जालू 1918-1993 जरूर जालू, उस टाइम पे जालू। तो लाइफ पुअर बैकग्राउंड असली जिंदगी।
0: अच्छा।
1: और हमेशा जैसे सबको जैसे जिद जहाद पश हो, क्योंकि हमेशा जैसे लवर कास्ट बोन तुझनो या पतोई छोड़ना ले या ओने देना ले या जनो सुना भाई भाई खोने देना ले, तो रेस रिसनी जिंदगी लाई दुश्वार पश हो।
0: अच्छा सही आ रजा की जो अष्टय शलगा चार बियोगा चोई जा 1893 जा ढाका बंगाल जालो सो मगर हिंदुस्तान हिस्सा असलो
1: हिंदुस्तान।
0: तो साधो रेसी रेसनी यानी फूमो की दश इब्तदाई तालीम कौन रजी का वजू
1: या रेस रेसनी इब्तदाई तालीम ढाका कॉलेज टू स्कूल के रजाओ।
0: अच्छा
1: स्कूल का सुलो सो
0: बंगाल जा
1: बंगाल जी असलो। अच्छा। सद रजियो हो जातो लेकिन सद रेसी अचानक रेस रे शोक का असलो की बेंसो।

0: कुल जो खालिए
1: अच्छा
0: वही रोक खालियो तो रसी हिम्मत घर न था रस आई जगह के दूर दिश के गे तो रसी बड़ा कॉलेज के जुबली हाई स्कूल थो रे के एडमिशन गिने
1: अच्छा
0: और सद रस कामयाबी हासिल गथो आगे रिसानी
1: अच्छा है रिकी रो वाला सुलो ढाका कॉलेज स्कूल जा सुलो सदो आए जमाने जा ने स्वदेशी मूवमेंट याती महात्मा गांधी पंडित कसले या बाकी जवाहरलाल नेहरू आजादी करने या आजादी हिलिंग शोर आई बिली तो रसे हिस्सा के जन तो रसे अस्कूल लिखा रसे तो जो वजी पद्म
0: तो जो पन्नो जुबली हाई स्कूल एंड कॉलेज टू रे के जर से एडमिशन गिने ओई सद रे सनी इब्तदाई तालीम पूरा मुकम्मल थो
1: अच्छा तो सद रे सी जे के जो क्रमक थो जो आदो पत्नो कॉलेज जो जिंदगी छुपट बे पतो
0: सद रे सी रे थे सद रे सर प्रोफेसर गलत आई रे के इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम ढाका प्रेसिडेंसी कॉलेज टू रे के सर असिस्टेंट प्रोफेसर गलत हो
1: अच्छा
0: ओई रिसनी से ड्यूटी का निभाई थवा दियो
1: अच्छा ए कॉलेज रे से नौकरी शुरू था
0: कॉलेज शुरू था
1: अच्छा सदो अनि मैगनाथ एक बड़ो नो मैग बिल जो करे अनु दो बड़ी हस्ती दुलिएगा वो साइंटिस्ट दुलिएगा वो या पर्सनालिटी दुलिएगा वो
0: अच्छा जो बस आ रहे थे असलो तो रेस रे फिजिक्स ही ला शौक असलो
1: अच्छा
0: फिजिक्स ही शौक बोन तो रेस एक ब्रांच एक चुनाई था ब्रांच असलो रेस एस्ट्रो फिजिक्स थी
1: अच्छा।
0: एस्ट्रो फिजिक्स जो हमेशा स्टार्स उबारे जो रेक थे ना सादे पताक थे ना तो सादे आमतौर पर टेम्परेचर कने भी एनी यानी स्टार्स कना वो दुले जहाँ स्टार से फंक्शन कन थे ना से सुबारे रे सी रिसर्च था और रिसर्च लाई कामयाब गबिली
1: अच्छा।
0: और उस जमाने में नोबल पीस प्राइज के लिए रूम नोमिनेट गबी लालो जो टॉप टेन है असल आयोनाइजेशन थ्योरी अच्छा कामयाब बोय और काम लेकिन बदकिस्मती रस न लादो लेकिन नोमिनेट रो बिला लो नोबेल पीस प्राइज रे
1: अच्छा
0: आप बड़ी अचीवमेंट रिसनी जिंदगी हासिल था वही रिसनी नला नला ऐसे नला रे प्रोफेसर रोला दलो साथ अगर बढ़िया क्रोमित हो गाओ
1: अच्छा यानी मेघनाथ साहा साहब बताओ बड़ नो कपिल रारे का सजा रे कि बेस फिजिक्स थोनस तो फिजिक्स से बेस नाप तोल थोनस मेजरमेंट थोनस चीज को या से कना वो दुलिजली से बारे रहा थोनस तो मेघना साहा तारो दुलनी का तारे कनबो जम बेने को मुशोयने को बारे जैसे नहीं साइस जो कहीं इससे बड़े कना हाँ चुने का चा कहानी बारे जा कम एक दुनिया ते मजा ना ही तहकीक मुशो देगा और उस जमाने जा जैसे नोबेल प्राइज का नामिनेट थे तो नोबेल प्राइज तो नहीं लगा लेकिन नामिनेट बोनी का बड़ा
0: बोनी बड़ी बात
1: साहब अच्छा सादो पतो जो रिसी क्रोमिक थे
0: सादो रिसी रिसानी जिंदगी जब अब रे सर शोक गसली जो बच्चे बने रे सी हमेशा ताय सोसाइटी पछालो जहाँ डिस्क्रिमिनेशन थे ना फर्क थे ना अनटचेबिलिटी है इस हमेशा आप ही वजह रेक बुन हासिल की अनाई के बेनी तो रे सी कार्यो आ छम जो निकारो इलिमिनेट हो निकारो रे सी पॉलिटिक्स ज्वाइन था
1: अच्छा
0: वही पॉलिटिक्स ज्वाइन होने का रे सर अचानक रुपये ना सी रिसनी खाजी कैंपेनिंग होनी या रेट होनी लेकिन रे सी अचानक जुनून हासिल जो वही लोगों जको ही वजह अचानक पसंद था रे से कि रो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खातो और इंडिपेंडेंट खाजी रो सोना कुछ सीटें जो
1: अच्छा।
0: सोना पर्सन वोट थोशे अच्छा। रो जीत बोई आज प्रोविंसी जर लीडर दुली जुलो
1: अच्छा
0: सर लीडर दुली जी रेसी अनि फर्स्ट ऑफ ऑल रेसनी कास्टिज्म कास्ट बेस जर से क्रम लाओ था
1: अच्छा।
0: और साथ ही साथ रेसी अनि एजुकेशन खासकर हेल्थ सेक्टर उन गरीब बुकार अवलपमेंट होने का अवक्रमित होगा रेसनी पत्नी जिंदगी है
1: अच्छा यानी कि रेस लेल बिली की हिंदुस्तान में जाने जात जात पा लाइट रखना थे तो से सो खराब रसी क्रम थे जैसी गुनाओ की जब तक मो बड़ो मनो रुक न
0: दुलियम
1: मुसानी जात पात करेगा खत्म
0: हम छोन बार बोन
1: न छोबे ऐसे कर रहे से पॉलिटिक्स जैसी भाग नहीं गाओ और आओ जमाने जो तो गरीब हो तो गा लेट रहो तो गा रुक कुरेगा अच्छा सदो पत्नो जोक थे जो
0: सदो रसी अताओ रो रिसर्च का सुजो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल लाओ रो कसलो और एजुकेट मनु रो कसलो तो हर चीज रेस रे राय गिनी उनकी धीरे धीरे इंडिया जको जे गुनिये की हाँ अनु एजुकेट मनु रुक बिल हर चीज रेस राय गिनी और रेस राय अता अता दे लो जैसे कि पशु ने जो दमोदर रिवर रिवर वेरी प्रोजेक्ट हुआ था
1: अच्छा
0: सो प्रोजेक्टर रेसी इनिशिएटिव रेसी गिने आलो आज चीज हो
1: अच्छा।
0: और आज भी सक्सेस हूँ उस जमाने रेसी आप प्रोजेक्ट इनिशिएटिव गिने आलो और आज भी दमोदर रिवर थी प्रोजेक्ट में स्पेशल होना गुजरात जा सो रिवर आज सो सक्सेसफुल हूँ तो आता आता जैसे चीज क्यों गाऊ रेसनी चीज फील्ड ले जा
1: सही
0: तो हर चीज रेसे कामयाब होगी
1: अच्छा माशाल्लाह बहुत मिस्टर को मिथे गाऊ रेसी एक तो जात पात छुपटते गाऊ सदोगे साइंसदान दुले गाऊ सदोगे यानी ये लिखा जोनी क्रोमिका दे जकोरे जरातो का तुम पछड़ी का उराज का कामिया फंतरा जी का वही मुझे जगले सी खिदमत ही था
0: वही खिदमत तेरे से आई ही जो रसी डिफरेंट कॉलेज ने सनी फरेज अंजाम का था कलकत्ता जो कॉलेज के रसी फरेज अंजाम

0: छौ या वहीं बड़ा यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छौ प्रोविंस के को तसे उत्तर प्रदेश जही पहला इलाहाबाद थनले
1: अच्छा
0: सद एवरेज रिसने फरेज अदा थे गौ
1: अच्छा
0: आई छौ जेसी बड़ा रिसनो साइंस एंड कल्चर एरेस एडिटर एडिटर का दूली जुलो
1: अच्छा
0: सर सनी मौजू उजू हर हफ्ते में या मोज के रस मौजू दे लो सर सर सनी जिंदगी जे थे गौ आई फर रेसी इंडियन फिजिक्स सोसाइटी जो आता है ब्रांच एक रेसी प्रायो
1: सही
0: बड़ा इंडियन एसोसिएशन डायरेक्टर डायरेक्टर बिल्कुल कनी सो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो 1953 से 1956 तक सद जो डायरेक्टर फिर जुलो
1: अच्छा
0: मैं बेशक रेसी मैं दुनिया हर फील्ड जो क्रम थियो सिर्फ एस्ट्रो फिजिक्स ही ने बेटो रेसी हर फील्ड जो गरीब हो तो की हर चीज जो रेसी अप्लाइमेंट होने कोशिश था फील्ड तो
1: अच्छा माशाल्लाह बहुत ही शुक्र में थे गाँव की ढाका कॉलेज जो रजी चुनी गांव के जो
0: कास्ट
1: कभी
0: सिस्टम
1: बाले
0: है कोई जो आएगा
1: कास्ट सिस्टम में चुनी जात बिल थे के मनु जो जो कभी जात पात की निश अनाज साहब बे मनु रसे जात पात पेनस
0: बाइनस बस
1: मगर जिस ही अचानक लिचार गुर्बत पशी बड़ो नो में दुले गौ और हिन्दुस्तान अशमो का तुसे रसे एक शल के ट्रिप भी दई रसे जाल देश मनु हरस तो मु तुझे एक रेसी बारे तुझे राजे दा अनाज साहब
0: मुझे तुझे कहीं जो कि आज के बेंसु सोसाइटी पशु होनस
1: अच्छा
0: यानी चुनो जात वालों बेंसु अच्छे घर रोनुश
1: सही
0: या सुनो बेंसु हौसला अफजाई थोन या आगे जुनो रिसोर्स एक दोन या गरीब बोई काबिल गए ना बाल बेंसु नोर आगे हर कोशिश बेंसु थोनुश आनी सो जब बेंसु बायोग्राफी यानी हिस्ट्री रजुनस
1: सही
0: तो आज असनो ही मुझे पता भी नहीं कि अनाओ बाल गए ना
1: सही
0: सोसाइटी जगह अनाओ बाल कुछ
1: सही
0: कर सकते हैं साइंटिस्ट बोली जो ना बे बदकिस्मती भी है सोसाइटी की हाँ की बेंसु अनाओ बालो पशुंग अनुष या पशले तो अपलिफ्ट होने की कोशिश मैं सु थो अनुष तो बेंसु असोन थोड़ी जरूरी है कि असोन अता एनजीओ नस खुदा एक करम थे असोन जी की अच्छा अगर सोर्स दे कि बेंसु वाले अनु बालो या जेग ने जेग ठहरों की कोशिश ठहरों आवाजी ताकि असनी सोसाइटी का जो अना वो बालक से फायदा दी
1: मेघना साहा तकरीबन ट्रिप जो 2 साल शायद जिंदा रहते हो याका साहब जो शायद कुनीशल का दुब जो का शौंग है जम्मू दने करे मो
0: 1956 है रो
1: बिल्कुल
0: मोजो
1: कुनीशल
0: 16 फरवरी
1: का दुब जो का शौंग है तो ना
0: 62 साल
1: सुना
0: है 62 साल है अगर मैं चले तो उर्दे रजले तो 62 साल
1: ट्रिप जो का 2 बरिश
0: ट्रिप का 2 बरिश
1: जिन रहते और खिदमत लाए थे कहो
0: खिदमत
1: फिजिक्स
0: लाई
1: से
0: थो
1: क्रम थे कहो सियासत क्रम थे कहो जात पात चुपट थोड़ी जमा थे कहो तो लिया साहब मोर तो लाओ हाँ तू स्थिति दर्श लाई है सुर पता नहीं और मेघना साहा का ताई हस्तिक बिल्कुल से कचा गर से बार रजी गया सुन जा तुमने भी
0: छम्बो
1: ऐसा 20 मिनट प्रोग्राम में जा करेगा छुपटने भी
0: छम्बो
1: मुति लाख का इंशाल्लाह बिस्तुर हो थोन मुति हस्ती के बारे तुझ तो उम्मीद दर्श ऐसा मुश्को थे कि बोझे और तू ससनी जवानों का रिजिक मैसेज देता
0: जबान कर दे जो
1: जवानों का रियो
0: जवानों कार्यो जवान वानी जो कि बेस आज पशु असनी सोसाइटी है बेसु कि सिर्फ या सबक को पतो बेउन हंस
1: अच्छा
0: या सबक ने रजले तो बेंसु को त्यानी गेमे तो या सोशल मीडिया ताई प्रेवेल वही बेंसु रील्स गए रेस जब ब्यूजी है चुनस बेंसु सोसाइटी का जो ओवी मुछो हो तो क्रो में तो बेंसु थोन या योग का बतन सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है या मुत चीज एक बेंसु एजाद थोन या बेंसु आना आने वाले यानी मास मीडिया की बेंसु आनी हेरिटेज एंड कल्चरल क्रोमिक थोन या दुनिया तो बहुत रिसोर्स है सही हाँ आंसू कार्य मुछो बेंसु थोन तो अनि मेघना सहा एक अनाव पुअर गांव के जो खजी अता रे के खजी अना दुलीजी नु आज बेस पशे होना असने सोसाइटी जगह असने इलाके जगह मैं अना बाल हाँ लेकिन मुछो ओ अना उक्रो मिठो बेस कोशिश थो नुश तो जर्री है कि मुछो ओ अना उक्रो मिठो ने सुने लाओ जर्री
1: तो अना बड़ी बड़ी हस्तियों जिंदगी बारे जा रजी जनो जो मुतासिर कुन जिंदगी पशी जवानी से का मुछो आती थी यानी शायद मैसेज असली अना साहब बिस तुर होत जूथ होना कि अशी स्टेडियम में जा आलो तुम मुला लो खेण जो खेण लिखले मुझसे ही गुट मार्गी जूत मुस
0: ये जी है
1: तो जार का सजा रे अनु असलो इनायत अली खान साहब मेघना साहा बारे जा तो मी दश तो मी गुनानी मुश होते गाओ तो अश बेसु मन्यो हनेस एक शल का ट्रिप युगा एक शल का बी का ट्रोई 133 जैसो जन्मदिन जारो देश अनेस साथ ही आकाशवाणी करगिल जो शना प्रोग्राम फोनरो खेनगा छुपा फेनो रारेगा सजारे मु तो प्रोग्राम है कि सो मखोरो सो मुशोई सट्ठंग मोड़ दिया इजाजत सो कौन घनत तुगा शुन मेहर का मोहब्बत की तो में चाल बालों से मोहब्बत की तो में पोरो जे मोहब्बत छुरे जिंदगी तरियो की चमाटे बचा खुदा यार दबोन रचा
2: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI।

0: आई आपका साइबर रक्षक।
1: शिना प्रोग्राम पुनर्नतिसनाबिन जितन प्रोग्राम असर तांसे प्रचकन बिन में मुख्तार जाहिद बरगामे मीडिया में कांचा आकाशवाणी करगिल का नजर ने तो अक्सपुर थाने बाजार चो संसुक बयान है आकाशवाणी करगिल का ने दिनी प्रचक पैद भी टोकला नो अक्सपुर छम सोदारन ना हस्केंग में बजा चुंगिस का यंता ने थुगे दिसक पांचा से जाजल लनित यह जो खुदा ने और सखमान फिकने जय हिंद